नमस्कार, FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी जलंधर दे रेनबो चैनल तो बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 दे आशांग महीने दी 2 तारीख, 23वीं सन 2026 दे जून महीने दी 23 तारीख है। इस वेले सवेर दे 5:58 ते 40 सेकंड हो रहे ने ते साडी अज दी सभा दे प्रोग्राम हुण शुरू हुंदे ने। सभा की इस खूबसूरत शुरुआत विच असी अपने सारे स्रोतियां दा निघा स्वागत करते हैं।

एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम रिम्बो तुसे सुन रहे हो स्वेदे 6 बज रही ने। आओ दोस्तों, सब तो पहला जानते हाँ साढ़े अज रात 11 बजे तक प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा का वेरवा ते प्रसारण समा परचे के मुताबिक।

પ્રોગ્રામ હોમ સ્વીટ હોમ દે રાહી એક વજે સુનોગે મિડ ડે મેલેડીઝ પ્રોગ્રામ એક વાજ કે 40 મિનિટ તે સુનોગે પંજાબી ખબરા મિડ ડે મેલેડીઝ પ્રોગ્રામ ચાલતા રહેગા 2 વજે તક 2 વજે એન્જોય કરોગે દિલ આજ શાયર હૈ પ્રોગ્રામ दो बज के 30 मिनट से 2:30 बजे तुसी सुनोगे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग 3 बजे सेहत दे नाल जुड़िया गल्लां बातां होणगियां रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम दे राही शाम 4 बजे इंजॉय करोगे हैलो जलंधर प्रोग्राम शाम 5 बजे ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਿਵਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਾਰੋਹ 2 ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ शाम 6 बजे लव यू जिंदगी प्रोग्राम 6 बज के 20 मिनट तक सुनोगे प्रदेशिक खबरां लव यू जिंदगी प्रोग्राम चलता रहेगा 7 बजे तक शाम 7 बजे सुनोगे एफएम न्यूज हेडलाइंस 7 बज के 2 मिनट तक बॉलीवुड बॉलीवुड के बहुत सारे किस्से कहानियां प्रोग्राम फिल्मी दुनिया रात 8 बजे सुनोगे एफएम न्यूज हेडलाइंस बहुत सारी जानकारी दे विच वादा होने वाला थोड़े रात 8 बज के 2 मिनट ते इन्फो टाइम्स प्रोग्राम दे रही रात 9 बजे सुनोगे एफएम न्यूज हेडलाइंस हिंदी फिल्मी गीतां दीआं फरमाइशां पूरीआं होणगीआं प्रोग्राम दिल चाहता है दे रही रात 9 बज के 2 मिनट ते तुसीं सुनोगे रात 10 बजे सुनोगे शामी गजल प्रोग्राम 10:30 बजे एक प्यार का नगमा है ये सन रात 11 बजे तक प्रसारित होने वाले साढ़े प्रोग्रामा का वेरवा ते प्रसारण समा

वो सोना लिखा गया है, जैसा करे सो तैसा पाए, अभिमानी की जड़ सर पर जाए। बाकी ये अटल नियम है कि मनुख इंसान जिहो जे भी कर्म करता है, चंगे कर्म होन माड़े कर्म होन किस तरह के भी कर्म होन, वो सब मनुख जिहो जे भी कर्म करता है उसका फल उस वो हमेशा पा लैंदा, चंगा फल माड़ा फल, पनिशमेंट होवे रिवॉर्ड होवे हर तरह के उन्हों फल मिल जाता है। पर जिहड़ा अहंकारी मनुख होंदा उसकी जड़ जरूर वड्डी जाती है, वो जड़ तो जरूर खत्म किया जाता है। इसलिए अहंकार जिहड़ा जिंदगी दे विच उसनू कदे नहीं आउण देना चाहिए। तुसी जो भी काम करदे हो वो सिर्फ अपने लिए अपनी खुशी लिए ते अपने चंगे कर्मां दे लिए करो, किसे नूं दिखाउण दे लिए या फिर अपने आप नूं वड्डा दसण दे लिए कदी ना कुछ किया जाए।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग है जी सारिआं नूं। मैं हाँ जी थोड़ी अपनी आज अंजलि और FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्स, 103.6 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी जलंधर, आकाशवाणी अमृतसर ते सारे ही साडे लिसनर श्रोतियां दा स्वागत करदे हां जी मॉर्निंग प्रोग्राम दे विच। बहुत सारी जानकारी, बहुत सारिया गल्लां, विच विच गीतां दा डोज भी तुहानू मिलन वाला है। और पूरे 8:30 बजे तक असी गल्लां करन वाले आ जी, साडे आले दुआले दियां, साडी जानकारी दियां, और बहुत सारे जो कि तुहानू पता होना चाहिए कि साडे आले दुआले हो की रहा है। बहुत सारी जानकारी दे विच तुहाडे वादा करांगी। मैं हाँ जी तुहाडी अपनी आज अंजलि, और लिसनर दोस्त रेडियो ते तां साडा प्रोग्राम सुन रहे ने, बाकी लिसनर दोस्त न्यूज़ ऑन एयर ऐप दे राही भी साडे नाल जुड़ सकते ने। की करना तुसीं जाणा जी प्ले स्टोर दे उत्ते, न्यूज़ ऑन एयर ऐप डाउनलोड करनी है, उत्थे लाइव रेडियो ते जा के तुसीं रेमो जलंधर जिहड़ा है उह तुसीं सुन सकदे, उत्थे सुनाई देवेगी मेरी आवाज़। और अज दा दिन खास नवी मुस्कुराहट दे नाल, हंसते चेहरे दे नाल मैं क्या दिन की शुरुआत की जावे ना, खूबसूरत जी मुस्कान जिहड़ी है ना तुहाडे सवेर नूं जिथे होर भी खूबसूरत बनाएगी, साडे पूरे दे पूरे दिन नूं जिहड़ा है चार चन्न ला देगी। किवें, तुहानूं पता ही है कि जिवें असी जदों किसे भी अनजाण व्यक्ति दे नाल, असी कई वारी देख लैंदे हां ना कि असी किसे अनजाण व्यक्ति नूं देखिए बहुत ही मुरझाया होया सानू नज़र आउंदा, पर एक कोशिश अजकल बड़ी चल रही है, एवें ही तुसी किसी नूं देखते हो ना, किसी नूं सैड देखते हो, किसी नूं उदास जिहा देखते हो ना, जस्ट एक उसनूं एक मुस्कुराहट दे दो, एक हंसते हुए चेहरे के नाल उसके वल देख रहो, बेशक उन्होंने नहीं जानता होएगा उस वेले उसके चेहरे के उत्ते मुस्कुराहट आ जाएगी, और वह शायद सारा दिन सोचता रहेगा कि हाँ इंसान ने मैनू हंस के मुस्कुरा के मिलया देखिया जरूर है मैनू जानता होएगा, और इसे दे विच ही उसका हंसते खेडते सारा दिन निकल जाना। एक कोशिश ही है बई साडी, और बस तुसी इसे ही उम्मीद दे नाल मैं क्या दिन की चंगी शुरुआत करनी होंदी है, नवी ऊर्जा के नाल जो साड़ी शुरुआत होंदी है ना दिन साडे खास बन जाते हैं, पॉजिटिव सोच जिहड़ी है साडे आले दुआले रहिंदी है, तो साडा आला दुआला जिहड़ा है वह भी वधिया हो जाता है। और एक गल होर बई, कहिंदे ने ना असी अगर कितने सक्सैस पाउनी है, असी किसी भी काम के सक्सैस पाउनी है, छोटे बच्चे हाँ या फिर करियर के वल वध चुके हैं, तो सक्सैस पाउण दे लई कोई भी शॉर्टकट नहीं हुंदा, इस दे लई सिर्फ एक सख्त मेहनत करनी हुंदी है, रेगुलर तुसी होने चाहिए हो बहुत ज़्यादा, अपने आप के उत्ते तुहाडा सैल्फ कंट्रोल होना चाहिए, और सीखण की इच्छा होनी चाहिए, सीखण का लालच होना चाहिए, और जिसका नतीजा की हुंदा थोनू सक्सैस मिलती ही मिलती है, थोड़ी मेहनत, थोड़ी जड़े किए हुए काम ने, अपने आप के उत्ते विश्वास, वो सब कुछ मिल के एट द एंड जड़ा है थोनू एक वधिया सैटिस्फैक्शन भरी जिंदगी देने दे विच कामयाब हो। सो असी भी कोशिश करते हैं ना अपनी जिंदगी जिहड़े एक सफ़र चल रहा है उसनों हर दिन एक नवा मोड़ दिता जाए, हर दिन एक नवा मौका दिता जाए, कल जो बीत गया रह गया उसनों असी की कर सकते हैं, बस भूल जाओ उसनों, हाँ बढ़िया चीज़ां नूं याद रखो, पर सिर्फ उस दे विच ही अटके रहना कोई चंगी गल नहीं है, सो उसनों जान दो, अज जो थोड़े सामने हैगा उसनों अपने उस दे विच अपना बेस्ट करन दी, सर्वश्रेष्ठ करन दी कोशिश करो, विश्वास रखो अपने दे आप दे उत्ते, और हमेशा हमेशा हमेशा पॉजिटिव सोच जिहड़ी है ना बहुत कुछ चंगा करवा जाती है। सो मैं कहा जी इस चंगी सोच दे नाल अज दे असीं भी इस प्रोग्राम की शुरुआत करनी है, और शुरुआत जदों वधिया होएगी, शुरुआत जदों कैंट जी होएगी ना, उदों ही मैं क्या साडा पूरा दा पूरा दिन, पूरा दा पूरा सफ़र जिहड़ा वह वधिया निकलता। सो इस गीत दे नाल मैं क्या करदे हां जी अज दे इस प्रोग्राम की शुरुआत, पूरे 8:30 बजे तक थोड़ा और मेरा साथ।

0: आकाशवाणी जलंधर, आकाशवाणी अमृतसर दे सरोते मैनु सुन रहे ने, प्रोग्राम चल रहा जी गुड मॉर्निंग जलंधर, थोड़ी अपनी आज अंजलि दे नाल। और अज खास तरीक है 23 जून, सो मजबूत लोक सेवावां ही मजबूत समाज ते टिकाऊ विकास की नींह हुंदियां ने। यह हमेशा गल कही जाती है कि पब्लिक सर्विसिज जिहड़ियां ने, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिहड़ियां ने, वह हमेशा एक मजबूत जड़ की तरह, नींह की तरह काम करदियां ने किसी भी देश के विकास के लिए। सो अज जिहड़ा है यूनाइटेड नेशनस पब्लिक सर्विस डे जिहड़ा है सैलीब्रेट हो रहा है। और इस दिन नूं क्यों खास मनिया जाता है, की खासियत हैगी है, की महत्ता हैगी है लोक सेवावां दी साडी जिंदगी दे विच या फिर किसी भी देश दे विकास दे विच, उस सब दे नाल जिहड़ी अज असी गलबात जिहड़ी है तुहाडे नाल सांझी करांगे। और साडे नाल अज इस विषय दे उत्ते, इस टॉपिक दे उत्ते गलबात करन दे लई साडे नाल फोनलाइन ते जुड़े ने डॉक्टर रणजीत कौर जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर ने डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे विच। सो मैम बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी प्रोग्राम दे विच।
1: थैंक यू मैनू इस प्रोग्राम दा हिस्सा बनाउन दे लई
0: जी। सब तो पहला तो मैम अज डे सैलीब्रेट हो रहा है यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विसिज डे, इस डे दे बारे जानना चाहवांगे कि इस दिन नू मनाउण दी की महत्ता है, क्यों मनाया जांदा है ये दिन।
1: हाँ जी अंजलि जी, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2002 नू पास किते एक मते राई 23 जून नू यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे वजो मनाउण दा फैसला किता सीगा। इस दा उद्देश जिहड़ा हैगा लोक सेवा दे इंपोर्टेंस नू, महत्व नू उजागर करना, सरकारी कर्मचारियां दे योगदान नू मानता देना अते नवीनताकारी अते जवाबदेह प्रशासन नू उत्साहित करना सी, ताकि

इंग्लैंड की धरती ते भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।

थोड़ी अपनी आज अंशली थोड़ी ना लिबनी हुई है एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से होते। आजकल ना से कुछ तस्वीरां जड़ियां ने उसी देख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा कहने ना दिल नु दुखी कर रही हैं ने कि असी गंगा जल दा जड़ा पानी है वो इस वेले ग्लेशियर तो निकलन वाला जड़ा ठंडा गंगा दा जल है वो हुण गर्म हो रहा है। गंदगी सीवरेज या फिर प्रदूषण दे कारण जड़ा है पानी दे विच ऑक्सीजन घटती जा रही है। और ये जड़ी है जानकारी जड़ी है IIT हैदराबाद दे द्वारा रिसर्च दे राही ये सामने आया। और इस दे मुताबिक गंगा दे विच जड़ा है 2009-25 दे विच पानी दे औसतन तापमान जड़ा उस दे विच 1.8 डिग्री सेल्सियस तक ये वध्या। और नाल दस दिए कि यह पारा वधन दे विच हर साल दे विच इस दे विच वाधा हो रहा है। और नाल दी नाल जिहड़े रिसर्चर ने उन्हां दा कहना है कि टैंपरेचर दे विच हर साल इस दे वाधा होण दे नाल ऑक्सीजन जिहड़ी है उस दे विच भी कमी हो रही है। और जेकर गल की जाए ना कुछ तस्वीरां दी गल की गई है, असी कुछ तस्वीरें ऐसिया देखिया ने किन्नियां खूबसूरत नदियां ने किन्नियां खूबसूरत पानी वालियां ये थावां ने पर उन्हां नूं गंदा करन दे विच असी किन्नी वड्डी भूमिका निभा रहे हां। भूमिका ही ना कहांगे क्योंकि असी बड़ा प्राउडली इन्हां थावां ते घूमन जाने हां पर घूमन जाण दी थां उत्थे असी इन्हां नूं साफ सुथरा करन दी बजाए इस दी खूबसूरती नूं बरकरार रखण दी बजाए असी की करदे हां उत्थे ही अपना कूड़ा जिहड़ा कचरा जिहड़ा उत्थे छड्ड आने आ। बॉटल्स प्लास्टिक दी बॉटल्स जिहड़ियां ने उन्हां नूं गंदगी फैलाउण दे विच उत्थे असी कोई कसर नहीं छड्डदे। सो उन्हां नूं साफ सुथरा रखण दी जिम्मेवारी बहुत हद तक सिर्फ साडी ही है और असी ही उसनों गंदा कर रहे हैं। और हुण जिहड़ियां तस्वीरां कई सामने आईयां ने तुसीं भी देखियां होणगीआं तस्वीरां जो कि किन्नियां दुख दिंदियां ने किन्ना सानूं परेशान कर दिंदियां ने। जो हाल ही दे विच रिसर्च जो सामने आई है उस दे विच ये कहा गया है कि गंगा नदी ते जिहड़ा वो सेहत विगड़दी हुई नज़र आ रही है। पानी भी खराब होण दी जिहड़ा है पानी दी ना खराब होण दी गुणवत्ता जिहड़ी है वो भी घटदी जा रही है। और विज्ञानिक जिहड़े ने साइंटिस्ट जिहड़े ने उन्हां दा कहना है कि नदी किनारे हरित पट्टी दा जिहड़ा विकास है या फिर जल प्रवाह बणाव रखण दे लई ना जिहड़ा नदियां दे विच गंदा पानी डिग रिहा उन्हां नूं जिहड़ा प्रदूषित करन दा ए हर दिन ये प्रदूषित हो रही ने और लगातार जिहड़ा है ये पोल्यूशन लेवल वधदा जा रहा है। और उत्तराखंड दे विच गंगा दा जिहड़ा जिसनूं माइका कहा जाता है इत्थे गंगा जल बहुत दूषित हो चुके है। हाल ही दे विच आई एक ऑडिट रिपोर्ट दे विच पता लग्या कि हरिद्वार तक जिहड़ा गंगा जल उत्थे पीण तक पीण दे लायक भी नहीं रहा। गंगा दे पानी दे विच जिहड़ा है सीवरेज सीधे तौर ते डिगदे ने जिथे कि इस दी जिहड़ी क्वालिटी है पूरी तरह घट हो चुकी है और पूरी तरह इस दे विच गंदगी सीवरेज दा पानी मिक्स हो चुकिया है। बैक्टीरिया जिहड़े ने इत्थे आ चुके ने और ये जांच दे विच बीमारियां वधण दा इस पानी नूं पीण दे नाल गंगा जल नूं पीण दे नाल बीमारियां वधण दा डर जिहड़ा ओह होर भी वध चुकिया। जो तस्वीरां सामने आईयां ने उस दे विच ये गल सामने आउंदी है कि चार धाम दी यात्रा दे लई लोक जांदे ने इशनान करन जांदे ने इन्हां नदियां दे किनारियां दे उत्ते इशनान करदे ने ताकि साडे पाप धुल जाण और अपने कपड़े गंदे पुराने कपड़े उत्थे ही छड्ड आउंदे ने। इशनान तो बाद पुराने कपड़िया नूं उत्थे ही छड्ड दिता जांदा ताकि वह घर वो जिहड़ी साडे कहिंदे ने साडे पाप धुल जाण साडे कपड़े जिहड़े ने उत्थे ही रह जाण। कोई नहीं सोच

0: इंग्लैंड की धरती से भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 मेगाहर्ट्ज ते। एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: प्रोग्राम अड्डी टप्पा दे रहे आज जी 9 बजे तक इंजॉय कर दे प्रोग्राम और 9 बजे तो बाद थोड़िया मेरिया दिल दिया गल्ला असियां सांझा करांगे और बहुत सारिया गल्ला पता बहुत सारे गीत सांझे करांगे। फिलहाल इस पंजाबी बीट सॉन्ग्स दे सफर नू करदे आ शुरू। आजो जी तुसी भी इस सफर दे विच बनो मेरे साथी और इंजॉय करदे आ अड्डी टप्पा प्रोग्राम।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोला की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: नदी किनारे बैठी बुलबुल मूछ दाना छली दा, है ना। पंजाबी लोक गीतां टप्पियां दे विच इह जिहड़ी बोलियां ने ना, उस दे विच अक्सर कहा जांदा सी तू वापस आ जा तेरे बिना मन नहीं लगदा इकली दा। एक जिहड़ी प्रेमिका है ना वो अपने भावां नूं अपने प्रेमी नूं इह भाव बयान करदी है कि कुदरती दृश्य जिहा पेश करदी है कि मैं नदी दे किनारे बैठी हुई बुलबुल ए और उसदे मूँह दे विच मक्खी दा दाणा छली दा दाणा है और जदों वो अपने प्रेमिका नूं याद करदी है अपने अपने प्रेमी नूं याद करदी है उसदी याद हमेशा कहती है कि उसकी प्रेमिका का इकलिया दिल नहीं लगता दूर वसें का सज्जना आ और जल्दी आ जा बस इस तड़प न दूर किया जाए खत्म किया जाए। और तुसी भेजने है जी फटाफट मैसेज क्योंकि साड़ी और थोड़ी दूरी नूं वी असी खत्म करना है और फटाफट मैसेजेस जिहड़े ने ना भेजना तुसी स्टार्ट कर दो। फिलहाल मैं क्या जी इस प्रोग्राम दे विच आ गया जी अगला गीत और इस गीत दे नाल ही जिहड़ा है साडे लिसनर दोस्तों दे प्यारे प्यारे मैसेजेस दा इंतजार हो रहा जी।
1: बाबा गड्डी क्यों रोकी आ?
2: की दसा कुड़िए गड्डी दा तां गेर ही अड़ गया।

0: तेनु लख दे एक सुनावा तेनु दफ्तर हुणे पचावा
1: सच्ची
0: किसे बुढड़े ड्राइवर ताई किसे बुढड़े ड्राइवर ताई ना बाबा आ कु सुनाई
1: ओ वाह
0: तेनु लख दे

0: 뭐지?
1: इंग्लैंड की धरती से भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते।
2: FM 102.7 मेगाहर्ट्ज़ तो आड़ी अपनी आज

FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी सुन रहे हो FM रेनबो ते हुन पेश ने FM न्यूज़ हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दे तेजी नाल विकसित होण ते एक भरोसेयोग विश्व शक्ति बनन पिछे राष्ट्र पहला दा सिद्धांत मुख प्रेरक रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन विखे दूजे नागरिक सम्मान समारोह विच पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग हादसे के संबंध विच चार अधिकारियों नूं मुअत्तल कर दिता है, जबकि चार मुलजमान नूं गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नवी दिल्ली विच राष्ट्रीय खेतीबाड़ी सहकारी मार्केटिंग फेडरेशन दे नीलामी पोर्टल दी शुरुआत करेंगे। खाद लिया रहे चार जहाज होरमुज जल मार्ग पार करन तो बाद भारतीय बंदरगाहां वल वध रहे ने। कतर दे रास लफान सनती खेतर विच होए LNG धमाके विच 12 भारतीय नागरिकां दी मौत दी पुष्टि कीती है। देश विच 5 लाख तो वध अंग दान दा संकल्प लिया गया है। पंजाब मंत्रिमंडल ने विद्यार्थियों ते मापियां दे हितां दी राखी करन, उद्योगिक विकास नूं उत्साहित करन, डिजिटल गवर्नेंस नूं मजबूत करन ते प्रशासनिक पहुंच विच सुधार लियाउण दे उद्देश नाल कई अहम फैसले लए। कैलिफोर्निया विच अज तों शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट विच लक्ष्य सेन ते तन्वी शर्मा भारत दी अगुवाई करनगे। FIH हाकी प्रो लीग दे शुरुआती मैच विच अज भारतीय मर्दां दी टीम दा मुकाबला पाकिस्तान नाल होएगा। अते मौसम विभाग ने पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ विच 26 जून तक गरज चमक नाल मीह पैण बारे येलो अलर्ट जारी कीता। एसएन एफएम न्यूज़ हेडलाइंस।

मोहब्बत का मजा ही जुदाई के बाद है। एंजॉय कर रहे सी ब्यूटीफुल सॉन्ग अली ब्रदर्स की आवाज़ दे विच। प्रोग्राम नू अगे तोर दिया जी, प्रोग्राम चल रहा है गीत बहार ते दोस्तों गीतां दी बहार ता ही चंगी लगती है जेकर असी सेहतयाब रहने हैं, जेकर असी अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों तुहानू पता ही है कि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, तो ज़्यादा गर्मी दे विच साडी सेहत का की राज हुंदा है? जी बिल्कुल, सेहत का राज होंगे पानी। सो जदों भी घरों निकलो सोहनी जी बॉटल दे विच पानी नाल लेके जाया करो, क्योंकि गर्मी बहुत है दोस्तों। और असं इंतज़ार नहीं करना कि कदों सानू प्यास लगेगी तो असी पानी पीवांगे, नहीं, असी थोड़ी थोड़ी देर दे बाद पानी पींदे रहना है, ताही ता साडी बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो असी गर्मी दे विच भी रहांगे चुस्त दुरुस्त। सो जेकर तुसी घरों निकल चुके हो तो कोई गल नहीं, बाहरों पानी बाय कर लो। जेकर नहीं चुकया तो जेकर निकलना है हाले तो प्लीज़ पानी की बॉटल अपने नाल लैके जाया करो। और जेकर पैदल चलना है किते तो कोई हर्ज नहीं, जेकर असी सोना जिहा अंबरेला हाथ में फड़ लवेंगे, छतरी नाल लेके जाइए, सोहने सोहने ग्लासेस लेके जाइए, क्योंकि गर्मी दे विच अपना ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। सो पानी नू बिल्कुल नहीं भुलना। प्रोग्राम नू अगे तोरदे आ जी, मैं थोड़े लिए प्ले करन जा रही हूँ प्यारा जिहा गीत, प्यारी जी आवाज़ दे विच, श्रेया घोषाल दी आवाज़ दे विच। एंजॉय करदे आ गीत बाबुल वे।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

इंग्लैंड की धरती से भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।

एन्जॉय कर रहे हो जी 102.7 एफएम रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा है गीत बहार ते तुसी बने होयो निवेदिता दे नाल। वेल दोस्तों प्रोग्राम गीत बहार ते विच गीतां दी तां असीं बहार लगाई हुई है, गीत तुसी एन्जॉय कर रहे हो ते हुण विच विच मेरी भी वारी आ जांदी है। सो दोस्तों कहिंदे हुंदे कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, जिहड़ा अखां तों दूर हो दिल तों भी दूर हो जांदा है। ते असीं किहनूं दिल तों दूर करना मैं दसण लगी हां तुहानूं कि किस मुद्दे ते असी गल करन लगे हैं। दोस्तों जदों भी तुसी काम करन बैठना है, खान बैठना है या सौन दी तैयारी कर रहे हो तां फोन नू अलग कमरे दे विच रख दो, नहीं तां किसी ड्रॉर दे विच रख दो। क्योंकि रिसर्चेज ये कहंदी है कि चाहे फोन साडा बंद है चाहे साडा फोन स्विचड ऑफ है और जेकर उह साडे सामने पिया है ना और साडियां अखां दे सामने पिया तद भी सानू डिस्टर्बेंस होएगी। हाँ जी बिल्कुल, किवें होएगी क्योंकि साडा ध्यान बार बार उहदे ते जांदा है ते सानू लगदा कि साडे फोन च इह वी हैगा इह वी हैगा इह वी हैगा ते असीं फिर उहनू टर्न ऑन करन दी कोशिश कर लैंदे हां। ते अजिहा नहीं करना, जेकर तुसीं फोकस वाला काम करना है, तुसीं पढ़ाई करनी है, कोई रिसर्च करनी है, कोई वर्क करना है ते अपने फोन नू ड्रॉर दे अंदर रख दो, ड्रॉर नू ताला लगा दो। क्योंकि जदों फोन अखां दे सामने होएगा तद भी, ये रिसर्चेज दा कहना है, मेरा कहना नहीं है कि बस फोन तुहाडे सामने है उहदे नाल भी तुहाडी कोगनेटिव कैपेसिटी है जिहड़ी उह घटदी है, तुहाडी दिमागी समर्था तुहाडी शक्ति घटदी है जेकर तुसीं इहनू उदां भी ऑफ करके भी रख्या होया। सो हुण जदों भी असीं कोई भी कॉन्सनट्रेशन वाला फोकस वाला काम करना है तो अपने फोन नू दूर रख दिओ, ठीक है? मन गए ना गल, ये गल सही है। और हुण मैनू अगे चलना पैना, गीत मैं तुहाडे लई प्ले करन जा रही हूँ, प्यारा जिहा गीत है, तुसे एंजॉय करना है, मोहम्मद फैज़ की आवाज़ दे विच तेरी गलियों में।

प्रोग्राम चल रहा है जी, गीत बहार थे दोस्तों, वापिस आ गए तुसी जी। बिल्कुल, मैं थी बैठी हुई हूँ प्रोग्राम गीत बहार दे वेच थे दोस्तों, क्योंकि अजकल का जो टाइम है वो मीडिया का टाइम है। असी हर टाइम हर चीज़ दे लई असी अपने फोन ते डिपेंडेंट हो गए। हाँ, और फिर की करना, असी डिपेंडेंट हाँ तो कोई गल नहीं, सानू अवेयरनेस की जरूरत है दोस्तों। असी हर इन्फॉर्मेशन दे लई, हर जानकारी लई, हर न्यूज़ दे लई अजकल सब तो पहला किस सोर्स नू असी एक्सप्लोर करते हैं, साढ़े हाथ में जो फोन फड़िया होंगे। कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई भी जानकारी खंगालनी है, असं सब तो पहला अपना फोन छांटना शुरू करते हैं। असी देखते हाँ कि इन्फॉर्मेशन ठीक है, की चल रहा है। सानू सब तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मीडिया दे रहा है, बट की ऑनलाइन मीडिया जो सानू प्रोवाइड कर रहा है वो भरोसेयोग है? कि एक क्रेडिबल सोर्स है? हाँ, इतने क्वेश्चन मार्क है, ये सानू सोचना पड़ेगा, क्योंकि असी सोर्स नू बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो सानू इसनू यूज़ करन दा तरीका भी आना चाहिए। ये नहीं कि जो सानू प्रोवाइड किया जा रहा है असी अखां बंद करके उहदे ते विश्वास कर लईए, अजिहा नहीं। सानू मीडिया लिटरेसी की जरूरत है, सानू पता होना चाहिए है कि असी जिहड़े सोर्स तो इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहे हाँ कि इहदे तो हासिल करनी चाहिए है, कि इहदियां गल्लां ते विश्वास करना चाहिए, ये सानू फैक्ट चैक करना पड़ेगा। और सानू पता होना चाहिए है कि केड़ी र्यूमर है और केड़ी अथेंटिक न्यूज़ है। इहदे लई वी यस सानू सोर्स का ध्यान रखना पड़ेगा, सानू पता होना चाहिए है कि केड़े क्रेडिबल सोर्सिज ने, केड़े सोर्स बिलीवेबल ने जिन्हां ते असी भरोसा कर सकते हाँ, और हर जो मसाला साढ़े को आ रहा है वो ठीक नहीं है। सो करना की है जी, जदों भी साढ़े कोई चीज़ आती है, साढ़े कोई वायरल वीडियो आती है या शॉकिंग मैसेज आता है, तो इमीडिएटली असी उनू ट्वीट करना या उनू अगे दी अगे व्हाट्सएप के जरिए सेंड करना या उनू पोस्ट करना शुरू नहीं कर देना। असी पहला अपने दिमाग नाल सोचना है कि इस चीज़ के नाल जो असी कर रहे हैं इहदे तो बेनीफिट किनू है, सानू बेनीफिट है या किसी होर नू? जेकर नहीं बेनीफिट तो रुक जाओ, फिर इनू वायरल ना करो। और जदों भी असी किसी चीज़ नू वायरल करते हाँ, उनू रीपोस्ट करते हाँ, तो वेरीफाई जरूर करिए, क्योंकि ये साड़ी भी जिम्मेवारी बनती है। जेकर असी उनू अगे दी अगे सर्व कर रहे हैं तो साड़ी जिम्मेवारी बनती है कि असी ठीक कंटेंट सर्व कर रहे हैं, इतने साड़ी जिम्मेवारी बनेगी। चैक भी करना है और जेकर असी अगे सेंड करना है तो वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। सो दोस्तों, ये नहीं कह रहे असी कि तुसी ऑनलाइन मीडिया है जिहड़ा इहदे ते भरोसा नहीं करना, करना है, बट तुहानू लिटरेट होना, तुहानू एजुकेट होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जेकर तुसी सोर्स नू यूज़ कर रहे हो तो इस सोर्स नू यूज़ करन दा तरीका भी आना चाहिए। सो सानू ये चीज़ां मिलियां ने, सानू रब दा शुकराना करना चाहिए है बट सानू यूज़ अच्छी तरह करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। सो प्ले करन जा रही हूँ जी रब दा शुकराना, गीत मोहित चौहान की आवाज़ के, एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक।

या मैच नहीं कर रहे होंगे। सो अगे तो जदों भी तुसी रीपोस्ट करनी है, शेयरिंग करनी है, तां प्लीज़ पहले दो तीन पैरे ज़रूर पढ़ो और देखो कि वाकई ये हेडलाइन के नाल खबर मैच कर रही है। जेकर कर रही है, तुहानू लगता है कि ये नाल किसी का फायदा हो सकता है तो असीं उन्हूं ज़रूर सेंड करिए। जेकर लगता है कि एवें ही है तो फिर ना करिए। सिर्फ हेडलाइन देख के असी खिंचे चले नहीं जाना, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों, असी डिजिटली अवेयर होना है, अपने आप नू असी अवेयर करते रहना है टाइम टू टाइम। जिहड़ियां भी साढ़े कोल साइंस दियां काटां साढ़े सामने आ रही ने, असी उन्हां नू जरूर यूज़ करिए, बट अवेयर रह के। सो प्रोग्राम दे विच दोस्तों समा हो गया है, तुहानू बाय बाय कहना है। हाँ, प्रोग्राम दे विच, सिर्फ प्रोग्राम दे विच, क्योंकि अगले प्रोग्राम दे विच मैं जल्द ही तुहानू कुछ ही पलों के बाद फिर मिलांगी। होएगा जी प्रोग्राम, तुहाडा फोन इन प्रोग्राम, यस। तुसी उहदे विच मैनू फोन भी कर सकोगे अगले प्रोग्राम दे विच। फिलहाल गीत बहार दे विच मैं तुहाडे तो लैनी है इजाजत, ते कुछ ही पलों के बाद फिर मिलते हैं।

0: प्रोग्राम चल रहा है जी, पंजाबी तड़का। पंजाबी तड़का दे विच पहुंच चुके ने, साडे कोल अगले कॉलर कॉल कर दें। हेलो,
1: हेलो, सत श्री अकाल मैम।
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: मैम सोनू बोल रहे हैं जी, पिंड कूका तलवंडी, डिस्ट्रिक्ट कपूरथला तो जी।
0: कपूरथला तो बोल रहे हो? गर्मी वादू कितनी हुई है फिर?
1: हाँ जी,
0: गर्मी किन्नी क कितनी है
1: हाँ
0: कपूरथले
1: जी
0: च?
1: मैडम, गर्मी 2-3 दिन की ज्यादा हो गई मैडम। परसों चौथ बारिश हुई थी पर गर्मी फिर हो गई मैडम।
0: ठीक है, ते फिर ठंडा ठंडा पी रहे हो?
1: हाँ जी, हाँ जी मैडम, ठंडा पानी रखा दुकान से, घर का पानी पीते मैडम।
0: चलो ये तो बहुत ही वधिया। ते फिर मैनू ए दसो कि अज आपां मिमिक्री करनी है, किहदी मिमिक्री करोगे?
1: मैडम मिक्री नहीं आउंदी मैडम मेरे
0: नहीं
1: करनी
0: आंदी?
1: जी,
0: ओ
1: नहीं नहीं
0: हो, ते चलो मैनू ए दसो कि क्लास विच जिहड़ा टीचर तुहानू बहुत पसंद सी ओह किदां बोलदे सी, ओह दस दोगे?
1: मैडम, एक साडे टीचर सी सुखविंदर सिंह जी। ते मैडम बस जदों 5 मिंट जदों लेट हो जाते सी ते मैडम बस वो डंडा फड़ लैंदे सी,
0: हाँ,
1: बहुत
0: फिर
1: खुरदे सी मैडम जी।
0: किदां बोलदे सी वो बोल के दिखाओ।
1: और सारे पुत्रों लैंड खड़े हो जाओ, सारे कटाई होनी है।
0: तुसे बड़ी सोहनी मिमिक्री करते, तुसे कहंदे मैंने मिमिक्री नहीं करनी आंदी।
1: नहीं मैडम, इस तरह बोल रहे हैं मैडम, वो
0: एक
1: बचपन
0: बारी
1: दी यादें
0: फिर,
1: होंदी मैडम सारे दिन जी।
0: एक बारी फिर बोल के दिखाओ।
1: और सारे लाइन दिखाई हो जाए, सारे ने कटाई होनी है ना।
0: चलो बहुत वधिया, बहुत वधिया। जे कितने तुहानू रेडियो
1: बाकी
0: तो
1: मैडम
0: सुनदे
1: तुसी
0: होए फिर।
1: प्रोग्राम बहुत अच्छा पेश करते हो मैडम, तुहाडी आवाज बहुत अच्छी है मैडम।
0: थैंक यू सो मच। ते गीत तुहानू दसो केड़ा सुना दिए?
1: ये गीत मैडम क्लियर कैंट तो सुना दो जी, तेरे नैणां वर्गे नूं।
0: हाँ जरूर सुनावांगे जी, थैंक यू सो मच कॉल करने दे लिए।
1: थैंक यू सो मच मैम।
0: सुगीत दी फरमाइश हुई है जी, कंठ कलेर दी आवाज दे विच सुनना तेरे नैणा वर्गे नैन, जरूर प्ले करांगे, पर उस तो पहला ब्रेक।
2: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। इंग्लैंड की धरती ते भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।

0: प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो जी। पंजाबी तड़का। हाँ तो पंजाबी तड़का वेच पहुंच चुके ने अगले कॉलर। कहाँ तड़का लगान लगे ने, आओ गल कर देना दे नाल। हेलो,
1: हेलो जी, सत श्री
0: सत
1: अकाल
0: श्री अकाल जी। मिठी जी, सोहनी जी, प्यारी जी आवाज़ किस दी है?
1: मैम, ते शरण गल कर रही हूँ जी। अपनी
0: हाँ
1: जिता दो
0: शरण जी, के दी शरण च ने
1: मैम, तुहाडी शरण च इस टाइम।
0: मेरी शरण ठीक है। ते फिर नाश्ता नुश्ता कर लिया, वेले हो गए?
1: मैम जो है ना, एक तुसी रिचा फैम ते रणदीप मैडम ने ना, मैं 10 बजे काम सारे नबेड़ लेनी है।
0: हाँ, तुहानू पता लग जांदा किन्ने आउणा है।
1: हाँ जी मैम,
0: ओ किदा
1: मैम तुहानू पता होंगे ना, इन्नी
0: ठीक
1: कता पिछले 10 साल दे रेगुलर लिसनर है, इन्नी कता जानकारी
0: है,
1: रखनी पैंदी।
0: चलो बहुत वधिया। ते मैनू ए दसो कि तुहाडा फेवरेट एक्टर या आर्टिस्ट कौन है? मैं अज ना ओहदी नकल तुहाडे कोलों सुननी है।
1: आर्टिस्ट
0: कोई भी, कोई भी घर दा कोई पर्सन जेहड़ा तुहानू बहुत पसंद होवे, मम्मी पापा किसे दी भी, मेरी किसे दी भी
1: मैम,
0: जो।
1: पहले नंबर पे मेरी मम्मा, दूसरे नंबर पे मेरी मिया जी। शायद
0: अच्छा चलो लगाओ, किदी नकल लगानी है अच्छा।
1: आ काम तो ध्यान नहीं किसे से पे पारी लेके आ ना पोते, तो आ काम रहने नहीं, आपे कर लूंगा। कपड़े नहीं तो तोड़े है, मैं आपे मशीन से पा लूंगा।
0: हाय हाय कोई और डायलॉग, कोई और डायलॉग
1: अच्छा
0: बस।
1: बुगे, मैं तेनू बहुत

FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी सुन रहे हो FM रेनबो ते हुन पेश ने FM न्यूज़ हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दे तेजी नाल विकसित होने ते एक भरोसेयोग विश्व शक्ति बनन पिछे राष्ट्र पहलां दा सिद्धांत मुख प्रेरक रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज शाम राष्ट्रपति भवन विखे दूजे नागरिक सम्मान समारोह विच पद्म पुरस्कार प्रदान करनगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग हादसे दे संबंध विच चार अधिकारियों नूं मुअत्तल कर दिता जदके चार मुलजमां नूं गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह अज नवी दिल्ली विच राष्ट्रीय खेतीबाड़ी सहकारी मार्केटिंग फेडरेशन दे नीलामी पोर्टल की शुरुआत करनगे। खाद लिया रहे चार जहाज होरमुज जल मार्ग पार करन तो बाद भारतीय बंदरगाहां वल वध रहे ने। कतर ने रास लफान सनती खेतर विच होए LNG धमाके विच 12 भारतीय नागरिकां दी मौत दी पुष्टि कीती है। देश विच 5 लाख तो वध अंगदान दा संकल्प लिया गया है। पंजाब मंत्रिमंडल ने विद्यार्थियों के मापियां के हितों की राखी करन, उद्योगिक विकास को उत्साहित करन, डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करन और प्रशासनिक पहुंच में सुधार लाने के उद्देश्य नाल कई अहम फैसले लिए। कैलिफोर्निया में आज तो शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूरनामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। FIH हाकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में आज भारतीय मर्दों की टीम का मुकाबला पाकिस्तान नाल होएगा। मौसम विभाग ने पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ में 26 जून तक गरज चमक नाल मीह पैण बारे येलो अलर्ट जारी किया। FM न्यूज़ हेडलाइंस।

एंजॉय कर रहे जी 102.7 एफएम रेनबो। तो दोस्तों प्रोग्राम शुरू हो गया है जी, होम स्वीट होम, होम स्वीट होम विच निवेदिता दा रहेगा तुहाडे नाल साथ, ते तुहाडे घर, तुहाडे परिवार, तुहाडे आले दुआले, तुहाडी सेहत नूं दुरुस्त करन दा, सेहत याब करन दा पूरा पूरा यतन करांगे जी। गल्लां बातां दा सिलसिला चलदा रहेगा ते नाल नाल गीत संगीत भी जारी रहेगा। सो तुसीं जाना किते भी नहीं है, बने रहना मेरे नाल, क्योंकि बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स मैं लेके आई हाँ तुहाडे वास्ते, सिर्फ ते सिर्फ तुहाडे वास्ते। सो तुसीं इसी तरह ही बने रहना, ते नोट करन लई जे कॉपी पेन चुक लोगे तो बहुत ही वधिया। सो तुसी जब तक तैयारी करते हो जी, मैं प्ले कर रही हूँ तुहाडे लई प्यार आ जिहा गीत, एंजॉय करो ते फिर असी जानकारियां वाला सिलसिला शुरू कर दें।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

ऐसा दे कि बस मेरे मुंह विच भी ना वो आ भी पै जाए, मैनू कष्ट ना करना पवे। तो फिर पत्नी की कहती, तुसी सोचे केड़ा फल हो सकता है? फिर पत्नी उन्हें कहती है कि जी तुसी ना सबर दा फल ही खा लिया करो, वो बहुत ही मिठा हुंदा है। सो तुसी भी जेकर घर विच कोई फल मंगदा है ना, तो कोशिश ना करनी चाहिए, तो उन्होंने कह सबर दा फल ही खा ला, सबर दा फल बहुत ही मिठा हुंदा है। तो लो जी प्रोग्राम चल रहा है होम स्वीट होम, तो हुण वारी आ गई है गीत दी, इंजॉय करते हाँ जी मोहम्मद रफी दी आवाज़ दे विच गीत।

0: यार बुलावे मुख दिखला जाए, ओ चोरी चोरी आ जाए, ओ चोरी चोरी आ जाए, ओ चोरी चोरी आ जाए।
1: इंजॉय कर रहे हो जी प्रोग्राम होम स्वीट होम ते दोस्तों साडा घर कद सोहना लगता है जदों पूरी तरह साफ सुथरा होवे तो सोहनी तरह सजाया होवे है ना। सजाना भी एक कला होंदी है और ये कला मैनू लगता है कि हर गृहिणी नू सीखनी चाहिए है क्योंकि घर देख के ही उसके व्यक्तित्व का पता लगता है कि ये किन्नी सुचची होएगी। सो घर नू सजाना ते सवारना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। छोटे छोटे टिप्स छोटे छोटे ट्रिक्स होंगे जिदे नाल साडा

भूलते नहीं तेरा शुकराना मालका, सो शुकराना पल पल करना चाहिदा है। जे पल पल शुकराना करांगे तो सानू अंदरों ही अपने आप ही खुशी का एहसास होंदा रहिंदा, जो कि जिंदगी दे विच बहुत ही जरूरी है। सो दोस्तों प्रोग्राम इंजॉय कर रहे हो जी होम स्वीट होम, ते होम स्वीट होम दे विच असी गल करन जा रहे हैं कि किवें अपनी इम्यूनिटी नू स्ट्रोंग करना। दोस्तों असी अक्सर देखते हैं कि जो मौसम दे विच बदलाव आता है ना, तो बच्चे बुजुर्ग जल्दी बीमार होना शुरू हो जाते हैं, जल्दी उन्होंने वायरस या जर्म्स का अटैक होने लगता है तो जल्दी बीमारी हो जाती है। गर्मी तो बरसात या बरसात तो जो सर्दी का मौसम आता है तब्दीली होती है तो तापमान दे विच नमी दे विच एलर्जी पैदा करने वाले जिहड़े तत् है वह थोड़े बढ़ जाते हैं, तो बच्चे या बुजुर्ग इहदे विच इहदे अटैक दे अंडर जल्दी आ जाते हैं। तो ये क्यों होंदा है? क्योंकि साड़ी इम्यूनिटी है जिहड़ी वह स्ट्रोंग नहीं होंदी। तो असीं करना की है? इम्यूनिटी स्ट्रोंग करन दे लई जी बच्चियां नूं फल फ्रूट्स हरिया सब्जियां दालां दुध ते दुध वाले जिहड़े पदार्थ ने वह देने बहुत ही जरूरी है। अंडा प्रोटीन इन्हां जरूर दिओ ताकि जिहड़ा भोजन है संतुलित जाए। मेन गल की असीं बैलेंसड डाइट देनी है। इस दे नाल की होएगा शरीर नूं जरूरी विटामिन ते खनिज मिलते रहेंगे ते शरीर दे विच रोगां नाल जिहड़ी लड़न की शक्ति है वह बनी रहेगी ते जल्दी अटैक्स जर्म्स का नहीं होंदा। इस तो इलावा नींद लैनी भी बहुत जरूरी है। जेकर तुसी भरपूर नींद लैंदे हो तद भी तुहाडा शरीर अपने आप नूं खुद जदों तुसी सो रहे होंदे हो तो खुद शरीर दुरुस्त करदा अपने आप नूं ते इम्यूनिटी भी स्ट्रोंग होंदी है। इस तो इलावा कोशिश करो कि रोज़ घट्टो घट्ट एक घंटा बाहर खेडना या शरीरक गतिविधियां

प्रोग्राम चल रहा है जी, होम स्वीट होम। सो घर दी गल हो गई, सेहत दी गल हो गई, तो किचन की में भूल जाइए जी। किचन भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि किचन तो बिना घर साडा अधूरा रहिंदा है। सो किचन दे विच अज असी बनाने जा रहे हैं जी दही प्याज तड़का। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है दही प्याज तड़का, किदा बनाना है वो मैं तुहानू दसन जा रही हाँ। करना की है, तुसी कॉपी पेन चुकया होया ना? जे नहीं चुकया तो फटाफट चुक लो। तो असीं इहदे विच लैना जी एक प्याज लैना, हरिया मिर्चा लैनी है दो, ते लसन दी कलियां असीं लैनियां 8 to 10, बरीक कटिया होया हरा धनिया लैना एक वड्डा चम्मच, दही लै सकदे हो एक कप, ते लाल मिर्च पाउडर एक छोटा चम्मच, नमक थोड़ा जिहा स्वाद अनुसार, ते जीरा पाउडर असीं लैना अद्धा छोटा चम्मच। तो तड़के वास्ते सानू चाहिए जी घी चाहिए एक वड्डा चम्मच, राई चाहिए है अद्धा छोटा चम्मच, तो जीरा सानू अद्धा छोटा चम्मच चाहिए। एक बारी मैं फिर तो इनग्रीडियंट्स दोहरा दिनी हाँ। दही प्याज तड़का दे वास्ते असी प्याज लेना है एक, हरी मिर्च लेनी है जी दो, लसन दियां कलियां लेनियां 8 to 10, बरीक कटिया होया हरा धनिया लेना एक वड्डा चम्मच, दही एक कप, लाल मिर्च पाउडर एक छोटा चम्मच, नमक ते जीरा पाउडर असी लेना अद्धा छोटा चम्मच, ते तड़के वास्ते सानू घ्यो चाहिए होएगा एक वड्डा चम्मच, राई अद्धा छोटा चम्मच, ते जीरा सानू चाहिए अद्धा छोटा चम्मच। ये हो गए साडे इनग्रीडियंट। ते हुण बनाना कितना, मिर्च ते प्याज नू असी कट लेना, और प्याज हरी मिर्च ते लसन दिया कलियां नू असी दरदरा कुट लेना, ठीक है जी। ते फिर हरा धनिया असी इहदे विच पा के कुट लेना, दही लाल मिर्च पाउडर नमक ते जीरा पाउडर डाल के इहनू महीन होण तक कुट लो। और तड़के दे लई असी घी दे विच राई ते जीरा तड़काना है, ते दही दा जिहड़ा मिश्रण बनाया उहनू असी इहदे विच पा देना। सो दही प्याज

एंजॉय कर रहे हो जी 102.7 एफएम रेनबो। द प्रोग्राम शुरू हो गया है मीठे मेलोडीज। सो दोस्तों मिड डे मेलेडीज दे विच अज असी सफ़र करांगे 60-70-80 दे दहाके दे उन्हां खूबसूरत हिंदी दे गाणियां दा जिन्हां नूं सुन के अज भी दिल दी धड़कन तेज हो जाती है। ते अज दा साडा जिहड़ा प्रोग्राम है इसका टॉपिक रहेगा हम दोनों। सो शुरुआत करदे हां इस प्रोग्राम दी ते 1961 दी फिल्म हम दोनों दे एक बेहद मकबूल गीत दे नाल प्रोग्राम दी शुरुआत करन जा रही हैं जिसनू गाया जी मोहम्मद रफ़ी साहब ने ते आशा भोंसले जी ने। सुनते हैं गीत अभी ना जाओ छोड़ के।

एंजॉय कर रहे हो जी प्रोग्राम मिट्टी मेलेडीज। गीत सुन रहे से अभी ना जाओ छोड़कर, दिल अभी भरा नहीं। दोस्तों इस गीत की मासूमियत ते देवानंद साहिब दा ओ अंदाज अज दे दौर विच अजिहा रोमांस कित्थे लभदा है। 60 दे दहाके दे गीतां विच एक अलग ही ठहराव हुंदा सी। चलो इस सफर नू 60s विच थोड़ा होर अगे वधाउंदे आ। 1960 दी सुपरहिट सस्पेंस फिल्म ज्यूल थीफ दा एक बहुत ही मिठा जिहा गीत, जिस विच लता मंगेशकर जी ते मोहम्मद रफी साहब दीआं आवाज़ां ने जादू बखेरे है ते एस टी बर्मन साहब दा संगीत। सुनदे हां गीत दिल पुकारे आ रे आ रे।

प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो जी, मिड डे मेलडीज़। दोस्तों, मिड डे मेलडीज़ दे विच दोपहर दा समा ते जदों अजिहे गीत दुकाने चलते होन ते फिर क्या ही बात। सो प्रोग्राम नू अगे तोर रहे हैं जी, मोहम्मद रफी साहब ते लता जी दी आवाज़ दे विच गीत एंजॉय कर रहे हैं। तेरी बिंदी आ रही

देखा एक ख्वाब तो सिलसिले हुए, सुन के दिल भागो भाग हो गया। 80 दे दहाके की गल करिए तो एक होर अजिही फिल्म आई सी जिसने रोमांटिक दुगाणियां की परिभाषा नू एक नवी ऊंचाई दिती। ये वादा रहा पंचम दादा संगीत ते किशोर आशा जी की जोड़ी। तो एक गीत अज भी ते जो गीत मैं प्ले करन जा रही हाँ ये अज भी प्यार करन वालियां दी पहली पसंद है। सुनदे हां 80 दे दहाके का सदाबहार नगमा।

इंग्लैंड की धरती से भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

इंग्लैंड की धरती से भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जोहार, जय हिंद। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं, गांव की मिट्टी में वो ताकत है जो इंसान को अपनी भाषा, संस्कृति और जड़ों से जोड़े रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे, गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी, और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे यही निवेदन रहेगा हमारा कि इसी तरह से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। स्वागत है एक बार फिर से, और आइए अब चलते हैं हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी भारत की विभिन्न झीलों के बारे में, याद है ना। हमने बात की थी मणिपुर की अनोखी झील लोकटक, हिमालय की सुरम्य वादियों में बसी मानसरोवर झील, ओडिशा की चिल्का झील और कश्मीर की डल झील की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब चलते हैं आज की चर्चा में। श्रोताओं, इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे भारत के विचित्र, रहस्यमयी और अनूठी गुफाओं में। सचमुच बड़ा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होगा उनके बारे में जानना, है ना। लेकिन पहले आपको ये तो बता दें कि हम गुफा को भौगोलिक रूप से परिभाषित कैसे करेंगे। तो आइए सुनते हैं इसकी परिभाषा। श्रोताओं, आम बोलचाल की भाषा में हम झील, पर्वत, लगून, मानसून जैसे शब्दों को तो कह देते हैं, लेकिन सही मायनों में उसकी परिभाषा वैज्ञानिक रूप से नहीं जानते। श्रोताओं, गुफा पृथ्वी की सतह के नीचे या अंदर प्राकृतिक रूप से बनी हुई खोखली जगह को कहते हैं। अगर आप पूछें कि इसे सरल शब्दों में कैसे कहें, तो आपको बता दूं कि धरती या पर्वत या समुद्र के भीतर प्राकृतिक रूप से बनी खोखली जगह को गुफा कहते हैं। हाँ, ये कभी कभी मानव निर्मित भी हो सकती है। तो आइए अब आते हैं आज के विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अद्भुत गुफा की, जिसे हम भीम बैठका गुफा के नाम से जानते हैं। श्रोताओं, इस नाम के पीछे एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा है। ऐसा कहते हैं कि यह नाम महाभारत के भीम से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि भीम इस स्थान पर रुके थे, भीम बैठका यानी भीम के बैठने की जगह। इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। सचमुच ये बड़ी रोचक बात है, इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। तो आइए श्रोताओं, अब जानते हैं कि भीम बैठका की गुफा है कहाँ। तो आपको बता दें, ये जगह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है, जो राजधानी भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं। लेकिन अब एक और प्रश्न मेरे मन में आता है, आपके मन में भी आ रहा होगा, और वो प्रश्न ये है कि भीम बैठका की गुफाओं का पता कैसे चला। तो श्रोताओं, इसके पीछे बड़ा मनोरंजक किस्सा है। वहां के स्थानीय लोग तो इन गुफाओं के बारे में जानते थे, लेकिन इसका पता विश्व

0: को तब चला जब डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने इसके बारे में प्रामाणिक ढंग से जानकारी दी। तो आइए जानते हैं कैसे पता चला डॉक्टर विष्णु वाकणकर जी को। तो आपको बता दें कि डॉक्टर विष्णु वाकणकर एक जाने माने पुरातत्वविद रहे हैं। वर्ष था 1956। एक बार वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। ट्रेन विंध्य पर्वतमाला से होकर जा रही थी। श्रोताओं, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो डॉक्टर विष्णु वाकणकर को जरूर याद रखिएगा। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ट्रेन की खिड़की से कुछ ऐसी चट्टानों और पहाड़ियों को देखा जो बड़ी कलात्मक लगी। वे दूसरी चट्टानों से भिन्न थीं। वे उन्हें अपनी फ्रांस और स्पेन की यात्रा के दौरान देखी गई प्रागैतिहासिक शैल चित्रों वाली चट्टानों जैसी लगी। तो फिर क्या था, वे उतर गए अगले स्टेशन पर और उस स्थान पर पहुंचे। बाद में उन्होंने बताया कि पहली गुफा में घुसते ही वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने वहां बहुत सारे शैल चित्र यानी पत्थरों पर बने चित्र देख लिए, जिन्हें हम रॉक पेंटिंग्स कहते हैं। जी हाँ श्रोताओ, इन गुफाओं में 30,000 वर्ष तक पुराने शैल चित्र हैं जो पुरापाषाण युग से मध्यकाल तक की झांकी प्रस्तुत करते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु वाकणकर को सन 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वर्ष 2003 जुलाई में यूनेस्को ने भीम बैठका की गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया। ये खोज पुरातत्व और मानव अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि भारत में मानव सभ्यता कितनी प्राचीन और निरंतर है। तो आइए श्रोताओं, आप जानते हैं कि इन गुफाओं में क्या ऐसी बात है जो इसे खास बनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत का सबसे पुराना ज्ञात मानव आवास है, जिसमें 600 से भी अधिक शैलाश्रय या रॉक शेल्टर्स हैं। ये प्रकृति द्वारा बने आवास हैं। इन गुफाओं में शिकार, सामूहिक नृत्य, युद्ध, पशु पक्षी और प्रारंभिक मानव की रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र हैं। श्रोताओं, इन चित्रों में गेरुआ, लाल, सफेद, पीले और हरे रंगों का इस्तेमाल हुआ है। ये रंग वनस्पति से बने हैं, इसलिए हजारों वर्षों बाद भी ये टिके हुए हैं। अगस्त 1990 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया। ये वो जगह है श्रोताओं, जहां संभवतः आदि मानव ने पहली बार पत्थरों की दीवारों को कैनवस बनाया। हम भीम बैठका की गुफाओं को भारत के इतिहास की पहली चित्र गैलरी भी कह सकते हैं। तो श्रोताओं, भीम बैठका की गुफाएं सचमुच अद्भुत हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की। 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन दोनों पतों पर हमारे प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती। श्रोताओं, ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण नेत्री बसंती के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
1: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया, मां की गोद ने और नदियों की घाटियों में। हजारों हजारों साल से मां ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी, जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया है।

नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।

और नादानी में जीवन देने वाली इस माँ के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं। 1972 में चिपको आंदोलन की शुरुआत कर अपने जंगलों को बचाने वाली गांव की ही एक अनपढ़ 50 वर्षीय बाल विधवा गौरा देवी थी।
1: और इस बार भी कोसी की रक्षा के लिए एक महिला ही आगे आई। हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: 1980 अप्रैल का एक दिन,
1: बावरी है। अरे चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है। हां चल घर चल। अरे चल सब खोज रहे हैं तुझे। अरे चल ना जल्दी कर।

0: उसने ठीक और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।
2: के लिए उजड़ गई बेटी, अरे तुम विधवा हो गई।

0: और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
0: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी, तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है। मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई। मानो कह रही हो, बेटी बसंती, तू उदास मत हो। ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको। तुम अपने जीवन दे सको, मायने दे सको।
0: बसंती घबराकर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते, वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले

0: जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
1: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती रही।

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसी दी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे
1: दीदी,
2: क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी, वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
2: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
2: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
2: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है, चल ठीक है दीदी, चलो चलो।
3: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
4: हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसका उपाय क्या है, क्या करें? हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए। नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।

0: लौटते हैं लक्ष्मी आश्रम की ओर, जहां सुबह सवेरे झोला लेकर बसंती बहन गांव का रुख कर रही हैं। ऐसा करते हुए उन्हें 45 दिन हो चुके हैं। वो रोज सुबह 6 बजे बरासे घाटी के गांव की ओर चल पड़ती हैं। शुरू में कोई उनकी बात को सुनने समझने को तैयार नहीं था। एक दिन बसंती को महिलाओं का एक झुंड मिला। सभी के हाथों में रस्सी और दराती थी। वे सब बहुत तेजी से जंगल की ओर जा रही थी। बसंती दीदी समझ गईं कि ये सब लेसाल गांव की महिलाएं हैं और जंगल में लकड़ी काटने जा रही हैं। बसंती दीदी ने उन्हें पुकारा।
1: अरे कहाँ जा रही हो बहनों? क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
2: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने।
1: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियाँ मत काटना।
3: वो भला क्यों? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें

0: यहाँ?
1: मेरे लिए नहीं, अपने कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
2: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
0: हाँ?
2: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
0: और क्या
2: है? आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
0: हाँ?
1: आमा, मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
2: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा, पर कोसी को हम कैसे बचा सकते हैं?
1: आमा, इसका जवाब तेरे पास है।
2: मेरे पास?
1: हाँ, तेरे पास। आमा, तुम इन सबको बताओ कि कोसी नदी बनी कैसे है।
2: कोसी बनी कैसे? ये कैसा सवाल है? क्या तुम नहीं जानती कि हमारे पेनाथ जंगल के बांज बुरांश के घने पेड़ प्राकृतिक जल को संचित करते हैं और उसी से कोसी का जन्म हुआ?
0: और क्या?
1: बिल्कुल ठीक। ऐसे में अगर हम जंगल काटेंगे तो कोसी में पानी घटेगा या बढ़ेगा?
0: घटेगा।
3: अब हमें तुम्हारी बात समझ में आ गई।
2: खाली हमारे समझने से क्या होता है, हम अकेले क्या कर सके हैं?
1: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
2: चलो, इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
0: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो
4: चलो चलो
0: जल्दी चलो, सबको बताते हैं।

और इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सैल, खीराकोटा, कांटली आदि गांवों में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था, और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।

0: और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त पूजा शर्मा। आज कार्यक्रम में हमारा विषय है वर्टिगो, सिम्टम्स कॉजेज एंड क्योर, यानी चक्कर आने की समस्या, लक्षण, कारण और इलाज। दोस्तों वर्टिगो एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को महसूस होता है जैसे वे खुद या उसके आसपास की चीजें तेजी से घूम रही हो और आंखों के आगे अंधेरा छा गया हो। तो क्या है ये परेशानी और क्या है इसका इलाज, इस विषय पर हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर विकास ढिकाव, जो हैं न्यूरोसाइंटिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और डॉक्टर विनीत गुप्ता जो हैं ENT स्पेशलिस्ट। डॉक्टर विकास एंड डॉक्टर विनीत, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद मैडम
4: जी। नमस्कार जी।
2: डॉक्टर विकास, सबसे पहला सवाल है कि वर्टिगो है क्या और ये कितने प्रकार का है?
4: जी देखिए, वर्टिगो का मतलब है चक्कर आना, आम भाषा में बोलते हैं। और चक्कर आने का मतलब ये है कि आपका हेड जो है वो मूव नहीं कर रहा है, आप मूव नहीं कर रहे हैं
2: जी।
4: लेकिन आपको ऐसी सेंसेशन होती है कि चारों तरफ की दुनिया मूव कर रही है, यानी कि आपके दिमाग में चक्कर है, एक्चुअल चक्कर नहीं है। तो वर्टिगो देखिए प्राइमरीली दो तरह का होता है, पेरिफेरल जो कि डॉक्टर साहब बताएंगे क्योंकि वो कान से रिलेटेड होता है। सेंट्रल जो वर्टिगो है वो अक्सर देखिए कॉन्टिन्यूस होता है, इंटरमिटेंट कम होता है और वो लो इंटेंसिटी होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है लेकिन काफी बॉदरसम होता है। तो जो सेंट्रल कॉज है वो सीरियस होते हैं अक्सर, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को स्ट्रोक आ गया, यानी कि लकवा मार गया, तो स्पेशली जो पोस्टीरियर साइड का स्ट्रोक होता है जिसको हम पोस्टीरियर सेरिब्रल सर्कुलेशन स्ट्रोक बोलते हैं, तो वो एक सीरियस किस्म का जिसको बोलें कॉज है। या इसके अलावा देखिए माइग्रेन है, पोस्टीरियर माइग्रेन या वेस्टिबुलर माइग्रेन बोलते हैं, वो एक कॉज हो सकता है। या फिर हेड इंजरी के बाद भी चक्कर आ सकते हैं। तो मोटे तौर पे गए और भी कॉज हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सेंट्रल कॉज अक्सर सीरियस हो सकते हैं। पेरिफेरल कॉज के बारे में डॉक्टर
2: विनीत।
3: जी मैम। मैम पेरिफेरल कॉजेज लाइफ थ्रेटनिंग और सीरियस नहीं होते हैं, बट अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को वो थोड़ा सा खराब करके रखते हैं, क्योंकि पेशेंट अच्छे से अपना रूटीन वर्क नहीं कर पा रहा है, अपनी नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है। मेनली जो अपने पेरिफेरल कॉजेज होते हैं वो ईयर से रिलेटेड होते हैं। ईयर में जैसे BP वो पोजीशन चेंज करेगा पेशेंट, अपनी टर्न हेड करेगा या करवट लेगा, उसको चक्कर आएगा। और भी कॉजेज होते हैं काफी
2: जी, इस पर बात करेंगे हम। पहले सुन लेते हैं गीत।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वर्टिगो यानी चक्कर आने की समस्या की, और इस पर हमें बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर विकास ढिकव, जो है न्यूरो साइंटिस्ट, और हमारे दूसरे विशेषज्ञ डॉक्टर विनीत गुप्ता, जो है ENT स्पेशलिस्ट। डॉक्टर साहब, बात अगर वर्टिगो के लक्षण और कारण की करें तो कौन से वो लक्षण है जिनसे कोई ये जान सकता है कि वो इस समस्या से प्रभावित है, और वर्टिगो होने के कारणों में कौन से कारण शामिल है?
1: जी, देखिए, अक्सर ये चक्कर से ही शुरू होता है और ये अनआइडेंटिफाइबल होता है कि चक्कर की वजह क्या है, कि गर्दन में चोट लगी है या सिर में चोट लगी है, या आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है, या फिर आपको लकवा आया है, या कोई आपको एक क्रॉनिक न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया है। तो कारण जो है इसका एकदम से पता नहीं चलता है, और अक्सर देखिए डॉक्टर को भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है ये पता करने के लिए कि ये पेरिफेरल कॉज है, यानी कि कान से रिलेटेड है। अक्सर 80% कॉज कान से रिलेटेड होते हैं, या फिर ये ब्रेन से रिलेटेड है। लेकिन ब्रेन की काफी सारी बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिसमें जो चक्कर है वो एक मैनिफेस्टेशन के तौर पे सामने आता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बीमारी होती है वेस्टिबुलर माइग्रेन बोलते हैं, माइग्रेन मतलब सिरदर्द। अक्सर सिरदर्द से ही आप माइग्रेन को आइडेंटिफाई करते हो, लेकिन इसमें सिरदर्द नहीं होता वेस्टिबुलर माइग्रेन में, इसमें चक्कर ही आते हैं। तो चक्कर से शुरू होता है। कभी कभी देखिए बीमारी इतनी सीरियस होती है कि दिमाग के अंदर कोई ट्यूमर हो, तो उसकी भी मैनिफेस्टेशन चक्कर से शुरू होती है। लेकिन हम अक्सर देखिए एज अ न्यूरोलॉजिस्ट ये सोचते हैं कि अगर मान लिया चक्कर के साथ साथ हेयरिंग लॉस है, तो आप पहले कान का जो सिस्टम है उसको चेक करवाइए, यानी कि हियरिंग अपरेटस है उसको चेक करवाइए, ऑडियोमेट्री करवाइए, और बाकी टेस्ट होते हैं सुनने की जांच जिसको बोलते हैं, तो उसके बाद में ही बाकी जो कॉजेज हैं उनके ऊपर फोकस होता है। लेकिन ये तो हुआ देखिए कारण की बात, जो लक्षण एक तो हुआ चक्कर आना, फिर आपको दो दिख सकते हैं, डिप्लोपिया, या निगलने में दिक्कत हो सकती है, बोलने में दिक्कत हो सकती है, या आंखों के सामने अंधेरा आ सकता है, या बेहोशी जैसी हालत हो सकती है, या आप लड़खड़ा सकते हैं, या आपके हाथ और पाँव में, या हाथ पाँव एक साइड का कमजोरी आ सकती है जो कि स्ट्रोक का लक्षण होता है, पोस्टीरियर सेरेब्रल जिसको सर्कुलेशन स्ट्रोक बोलते हैं, और एकदम से जी मिचलाता है या बहुत ज़्यादा उल्टी आती है। लेकिन जो एक चीज़ कंसिस्टेंट है वो स्पिनिंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो जो पेरिफेरल कॉज है उनके बारे में डॉक्टर विनीत
2: जी, जैसा सर ने बताया सेंट्रल कॉज के बारे में जो दिमाग की वजह से होते हैं चक्कर, उसमें जो है बहुत सारी चीजें, जैसे सर ने बताया लड़खड़ा आएगा, आदमी चल नहीं पाएगा अच्छे से, बट जो पेरिफेरल वर्टिगो होता है जो हमारे कान से रिलेटेड होता है उसमें ये सब चीजें नहीं मिलेंगी। तो उसी से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ब्रेन से रिलेटेड है या कान से रिलेटेड है। कान से रिलेटेड होता है तो यूजली जो है उसमें चक्कर होता है, चक्कर के साथ पेशेंट ये बोलेगा कि मैं अपनी करवट बदल रहा हूँ, पोस्चर चेंज कर रहा हूँ तो मुझे चक्कर आ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम BPVB। और फिर कान की अदर प्रॉब्लम
0: BPVB को अगर
2: बेनाइन पैराक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो बोलते हैं हम लोग इसको, तो उसका मीनिंग ही यही है कि पोजिशन चेंज किया आपने, करवट ली, या आपने टर्न करा किसी साइड में हेड और आपको चक्कर आया, तो ये इसका इनिशियल साइन होता है कि पेशेंट इससे जज कर सकता है कि हाँ मुझे कान की प्रॉब्लम है, तो हम मुझे कान को ही दिखाना चाहिए, और हियरिंग डिक्रीज हो रही है तो मेरे को ENT को पहले दिखाना चाहिए, क्योंकि कुछ एक न्यूरोलॉजिकल कॉज भी है वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस और वेस्टिबुलर लैब्रिंथाइटिस, मतलब कान के अंदर इन्फेक्शन हो गया जो हमारा इनर ईयर है उसमें, तो उसमें हमारी हियरिंग भी डिक्रीज होगी, तो उसकी वजह से हो रहा है, तो वो शॉर्ट शॉर्ट एकदम कान की प्रॉब्लम है।
0: सर, ये जो आपने बताया हियरिंग डिक्रीज होना, ये एक कान में होता है या दोनों में, या कभी कभार एक में भी?
2: रेयर, मोस्टली 1 ईयर का रहता है लैब्रिंथाइटिस, बहुत रेयरली है कि वो दोनों ईयर्स को इन्वॉल्व।
0: सर, इसमें क्या दर्द भी रहता है?
2: नहीं, दर्द नहीं होगा इसमें, चक्कर और उल्टी।
0: कान में दर्द नहीं होगा?
2: नहीं, कान में दर्द नहीं होगा। कान में दर्द हो रहा है तो वो एक्यूट इन्फेक्टिव स्टेज होगा, मैस्टॉइडाइटिस हो रहा है, और वो इन्फेक्शन बोन में है उससे पेन हो रहा है, और साथ के साथ हमारे इनर ईयर जो हमारा बैलेंसिंग ऑर्गन है उसको भी इन्वॉल्व कर लिया, तो तभी हमारे को पेन के साथ ये प्रेजेंट करेगा।
0: तो सर, ये क्या वर्टिगो जो बताया आपने, ये गंभीर है समस्या?
2: जो पेरिफेरल कॉजेज हैं उसमें गंभीरता कम है, मेन ये अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एम्पर करता है। जैसे किसी को रूटीन वर्क करने में प्रॉब्लम आएगी, जैसे मान के चलिए आप काम कर रहे हैं, कुछ भी झाड़ू लगा रहे हैं, झुक करके खड़े हुए तो आपको चक्कर आ रहा है, या आपने ऊपर से कोई सामान उठाना है, नेक ऊपर करा, एक्सटेंड किया, फिर आपने नीचे सर किया अपना, तो चक्कर आने लग गया, या आपने करवट अपना

0: बॉडी टर्न करा, राइट साइड या लेफ्ट साइड पोजीशन चेंज किया, चक्कर आ रहा है
1: जी।
0: तो ये ईयर का साइन है कि ईयर का इन्वॉल्वमेंट है
1: जी। सर इससे एक कोरिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन पहले एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल लाइन पे ले लेते हैं उनका कॉल। हेलो,
2: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार,
2: मैं रघुवीर सिंह ठाकुर बोल रहा हूँ उत्तराखंड से।
1: हाँ जी,
2: मेरे को डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि जो ये चक्कर भावनात्मक रूप से भी आते हैं क्या चक्कर? जैसे हमारी बिटिया को जैसे कभी कोई शादी के फंक्शन में जहाँ भीड़ होती है, या जैसे कभी कभी बार बार तो नहीं होता है, जैसे कभी पूजा करते समय या कभी ऐसा माहौल बन गया दुख भरा परिवार में, तो उसमें उसको बेहोशी चक्कर जैसा आ जाता है। मतलब ये महीने में मतलब बार बार नहीं होता, कभी कभी बार थोड़ी देर में ठीक हो जाता है, जैसे कभी शादी फंक्शन में या पूजा पाठ करते समय।
3: जी देखिए, दो सिचुएशन है। एक तो ये है कि जो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, जो क्रॉनिक अनअटेंडेड और मॉडरेट टू सीवियर स्ट्रेस है, उसकी वजह से इटसेल्फ चक्कर आ सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस से एंग्जाइटी होती है और एंग्जाइटी से स्पिनिंग सेंसेशन आ सकती है, एक बात। लेकिन अक्सर देखिए न्यूरोलॉजिकल प्रैक्टिस में ये होता है कि किसी को मिर्गी की बीमारी है और आके मरीज ये बोलते हैं कि हमें चक्कर आते हैं, या रिश्तेदार बोलते हैं इनको चक्कर आते हैं, और चक्कर से उनका मतलब होता है दौरा आना। तो दौरा आना इज अनदर सीरियस प्रॉब्लम, कि वो बिल्कुल अलग तकलीफ है, उसको मिर्गी की तकलीफ बोलते हैं। उसमें क्या है कि चक्कर खा के मरीज गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, और एक किस्म से बोलें कि टॉयलेट निकल जाता है, या फिर जो दांतें हैं एकदम से बिछ जाती हैं, जीभ कट जाती है, पसीना आता है, आंखें फिर जाती हैं, तो वो बीमारी बिल्कुल अलग है। तो उसको हम वर्टिगो से कंफ्यूज ना करें। वर्टिगो तो एक अलग किस्म की तकलीफ है, हालांकि जो एपिलेप्सी के लिए दवाइयां ली जाती हैं, जैसे फेनिटोइन है फॉर एग्जांपल, इसकी अगर डोज हाई हो जाए, कार्बामाज़ेपिन की डोज अगर हाई हो जाए, तो भी वर्टिगो की सेंसेशन हो सकती है, वो तकलीफ बिल्कुल अलग है। तो जहां तक इन्होंने अपनी बिटिया की बात की है, तो हो सकता है बिटिया को इन दोनों में से एक हो या दोनों में से कुछ भी ना हो, तो क्योंकि वो तो देखिए इवैल्यूएशन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन क्योंकि सिम्टम है तो इनको इवैल्यूएशन करवाना चाहिए, एक न्यूरोलॉजिस्ट को या ENT स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। और क्योंकि ये बता रहे हैं कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन में होता है, तो इट लुक्स लाइक कि कोई अंडरलाइंग जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर ऑर्डर है, तो उसके लिए साइकाट्रिस्ट से भी बात कर सकते हैं।
1: उम्मीद है कि इनको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं ना कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारा आज का विषय। हमारा विषय है वर्टिगो, सिम्टम्स कॉजेज एंड क्योर, यानी चक्कर आने की समस्या, लक्षण, कारण और इलाज। और इस पर हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास टिकव और डॉक्टर विनीत गुप्ता। डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगी
3: जी,
1: कि वर्टिगो ये कितनी गंभीर समस्या है?
3: देखिए, सेंट्रल वर्टिगो तो अक्सर गंभीर होती है, क्योंकि स्ट्रोक है, ब्रेन ट्यूमर है, ट्रॉमा है, हेड इंजरी है या नेक इंजरी है, व्हिप्लैश इंजरी जिसको बोलते हैं, डैशबोर्ड इंजरी, अक्सर एकदम से आप गाड़ी चला रहे हैं, ब्रेक मारे किसी ने बहुत तेजी से और सिर जो है डैशबोर्ड पे लगा, व्हिप्लैश इंजरी हो सकती है, तो ये गंभीर किस्म की वर्टिगो होती है। लेकिन कुछ ऐसी वर्टिगो भी होती है जो कम गंभीर होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेस्टिबुलर माइग्रेन है, तो वो उसको हम गंभीर माइग्रेन नहीं बोलते, लेकिन माइग्रेन की जो आम दवाइयां हैं जैसे सोमा ट्रिप्टान, राइजर ट्रिप्टान, तो वो वेस्टिबुलर माइग्रेन में काम नहीं करती हैं, तो उसको एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि बीमारी और उसके कारण तो एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मरीज को देखिए इमीडिएटली क्या करना चाहिए, ये एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो आप बैठ जाइए, आप चलिए मत, आप सीढ़ी से अगर उतर रहे हैं तो आपको बैठना परम आवश्यक है, या अगर आपको ज्यादा चक्कर आ रहे हैं तो आप लेट जाइए, उस करवट लेटिए जहां पे आपको स्पिनिंग सेंसेशन कम से कम महसूस हो रही है। शाम को आप कहीं जा रहे हैं, अंधेरा है, तो आप डबली केयरफुल रहिए, आप टकरा सकते हैं, अनस्टडी हो सकते हैं
1: जी।
3: या अगर आप हाइट पे हैं, पहाड़ों पे हैं, तो आपको पहाड़ों की वजह से भी एक्रोफोबिया की वजह से वर्टिगो सेंसेशन हो सकती है, या फिर अगर आपको वर्टिगो है तो वो एक्सेंचुएट हो सकती है। तो इसके अलावा अगर आपको बैलेंस में दिक्कत है, आप 60 से ऊपर हैं, तो आप छड़ी लेके चल सकते हैं। इट मे नॉट साउंड ग्लैमरस, लेकिन छड़ी लेना आपके फायदे में ही है, आप गिरेंगे नहीं। एक होता है देखिए एक्चुअल गिरना, और एक है गिरने का डर होना। तो गिरने का जो डर है, इस पे तो डॉक्टर विनीत थोड़ा सा आगे बताएंगे वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन के बारे में, लेकिन गिरने का जो डर है ये भी बड़ा एक कॉमन फिनोमेना है। इसमें क्या है कि आप शादी में, ब्याह में, बारात में, मंदिर में जाने से डरते हैं, आपको लगता है आप अनस्टडी हो जाएंगे, आप गिर जाएंगे, तो ये जो सेंसेशन है इसके साथ जिया जा सकता है। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पेयर जरूर करती है, लेकिन ब्रेन और आई का कोऑर्डिनेशन एक किस्म से दोबारा किया जा सकता है, ब्रेन को रीट्रेन किया जा सकता है। तो जो ये जनरल प्रिकॉशंस हैं ये आप जरूर रखिए, और इसके साथ साथ स्पेशली देखिए गर्मी है अभी बहुत ज्यादा, जून का महीना चल रहा है, पानी खूब पिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, चाय और कॉफी का सेवन कम से कम, नमक

0: जो बोलेंगे सलाद पे कम से कम चीनी, कम से कम, क्योंकि नमक और चीनी से कान का प्रेशर बढ़ता है, तो पेरिफेरल वर्टिगो बढ़ सकता है। और जिसको बोलते हैं जिमिंग, बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं वो जिमिंग करते हैं और उसके बाद भी कुछ लोगों को वर्टिगो हो जाते हैं, क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया तो उसकी वजह से भी वर्टिगो हो सकता है। तो इसका भी ख्याल रखिए कि अगर आप जिमिंग कर रहे हैं तो अंडर एक अच्छे ट्रेनर के अंडर ही आप करें, ऐसे नहीं कि मनमाने आज 50 किलो वजन उठा लिया, कल 25, फिर 75 किलो उठाने की कोशिश की, तो इसकी वजह से आपको दिक्कत हो
1: जी
0: सकती है।
1: डॉक्टर विनीत, इसी पर करेंगे आपसे बात, लेकिन उससे पहले एक कॉलर है, कॉल लाइन पे उनका
0: जी
1: कॉल ले लेते हैं।
2: बिल्कुल।
1: हेलो,
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार डॉक्टर साहब।
3: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 44 वर्ष है। मेरे
3: जी
2: सर में भारीपन रहता है,
3: जी
2: गर्दन अकड़ी रहती है, कमर में भी दर्द रहता है और मेरे कान में छेद है। तो मैं कारण पूछना चाहता हूँ, ये कान में जो पर्दे में छेद है इसके कारण है या कोई और है? चक्कर भी आता है कभी कभी।
3: कान में पर्दे के छेद की वजह से चक्कर आना बहुत मुश्किल चीज है।
1: जी
3: उसके साथ कुछ और, या फिर तो आपको बीपी बीबी का प्रॉब्लम हो, कान में जो हमारी कैनाल है उसमें पार्टिकल फॉर्मेशन हो गया हो, या हमारी जो कान की बैलेंसिंग कैनाल है उसमें कुछ माइनर छेद, साइनस टाइप का फिस्टुला फॉर्मेशन हो गया, उसकी वजह से चक्कर आ सकता है, बट वो रेयर चीज है। केवल छेद की वजह से चक्कर आना बड़ा मुश्किल चीज है।
1: जी
3: छेद की वजह से नहीं होगा, होगा तो या फिर तो अंदर पार्टिकल, या फिर वो आपके जो गर्दन जकड़ी हुई है और जो स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है उसकी वजह से चक्कर आ सकता है, और हो सकता है आपको माइग्रेन की भी शिकायत हो जिसकी वजह से सर में दर्द और उसमें नेक में आपकी जो गर्दन में जकड़न है वो हो रही हो और उसके साथ में आपको जो है चक्कर आ रहा हो।
0: ये हो सकता है कि इनको होलोक्रेनियल हेडेक बता रहे हैं, नेक की प्रॉब्लम है, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से रेफर्ड
1: जी
0: पेन हो इनको।
1: जी
3: जी
1: डॉक्टर साहब, अभी
3: जी मैम,
1: जैसे डॉक्टर विकास ने बताया कि वर्टिगो की स्थिति क्या है, आप क्या कहेंगे इस पर?
3: जी मैम, बेसिकली
1: कितनी गंभीर स्थिति है ये?
3: जो पेरिफेरल है उसमें गंभीरता नहीं है, वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है।
1: जी
3: लाइफ थ्रेटनिंग उस वे में कि जैसे सर ने पहले ही बताया कि आप ड्राइव कर रहे हो और आपको चक्कर आ गया, तो लाइफ थ्रेटनिंग है, क्योंकि आप या स्टेयर से या माउंटेन से नीचे आ रहे हैं, तो वो उन सारी कंडीशन में थ्रेटनिंग है। जो सेंट्रल कॉजेज होते हैं जो ब्रेन की वजह से हैं, वो डेफिनेटली लाइफ थ्रेटनिंग है, क्योंकि उसमें कोई ट्यूमर तो नहीं चल रहा, कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं चल रही। वो अगर चीज सेफ है, ब्रेन हमारा ठीक है, नॉर्मल है और पेरिफेरल हो रहा है कान की वजह से, तो ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है।
1: जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है हमारे साथ,
3: जी
1: कॉल लाइन पे ले लेते हैं उनका कॉल। हेलो
3: जी
4: मैम, नमस्कार।
1: नमस्कार
4: मैम, मेरा नाम दीपांशु है, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
3: नमस्कार
4: सर, मैं डेली प्रोग्राम सुनता हूँ बट आज का ये प्रोग्राम मेरे को, मतलब मुझे कॉल करनी ही पड़ी आपको।
1: जी जी
4: मैडम, मेरे फादर है, ही इज अराउंड 66 ईयर्स ओल्ड।
1: जी
4: उनको 4 साल पहले बेल पाल्सी का अटैक आया था।
1: जी
4: वो रिकवर कर गए थे अच्छे से, और 2 साल पहले उनको वर्टिगो भी आइडेंटिफाई हुआ, यही बीपी पीबी वाला जो है इशू।
1: जी जी,
4: तो क्या डॉक्टर साहब ये चीज आपस में इंटर रिलेटेड है या उस बेल पाल्सी की वजह से ये चीज ट्रिगर हुई है?
3: नहीं, ये दोनों चीजें आपस में, तो क्योंकि वो 4 साल पहले हुआ और ये 2 साल पहले हुआ है, तो ये आपस में इंटर रिलेटेड तो है नहीं। अगर बेल्स पेल्सी की वजह से होता तो वो न्यूरोलॉजिकल कॉज होता, वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस, वो उसी टाइम पे प्रेसिपिटेट करता 4 साल पहले। अभी 2 साल पहले हो रहा है, तो आपको डिटेल टेस्टिंग इसके लिए एक वीडियो निस्टेक्मोग्राफी, एक टेस्ट कराना चाहिए उनका, उससे रूल आउट करना चाहिए कि उनके कान की वजह से कैनाल में पार्टिकल फॉर्मेशन की वजह से चक्कर आ रहा है, और अगर MRI ब्रेन हो चुका है वो नॉर्मल है, तो मेरे ख्याल में आप नियर बाय अपने ENT डॉक्टर जो कि वर्टाइगो के स्पेशलिस्ट हों, उनसे वीडियो निस्टेक्मोग्राफी करवाएं और उससे एक बारी रूल आउट करवाएं, क्योंकि उससे हम कई बारी सेंट्रल कॉज भी रूल आउट कर लेते हैं। तो
4: सारे टेस्ट करवा के वो सब नॉर्मल आते हैं, इसीलिए
3: नहीं,
4: बार बार
3: ये वीडियो निस्टेक्मोग्राफी आपको टेस्ट कराना है।
4: ठीक है, वीडियो स्टेनोग्राफी,
3: वीडियो निस्टेक्मोग्राफी VNG करके बोलते हैं, आप ये टेस्ट कराइए, और इसके लिए पहले आपको 48 घंटे पहले चक्कर की सारी दवा बंद करके तब जाएं।
4: ठीक है,
1: बहुत अहम बात बताई आपने। जी डॉक्टर, आज का हमारा कितना इम्पोर्टेंट विषय है, और इसी पर देखिए लगातार कॉल आ रहे हैं। हमें एक और कॉलर है हमारे साथ, कॉल लाइन पे ले लेते हैं उनका कॉल भी। हेलो।
2: हेलो
1: जी,
2: नमस्कार। जी
1: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
3: नमस्कार
2: सर, मैं लोधी रोड नई दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरे को ना कंधे में, लेफ्ट कंधे में ज्यादा दर्द होता है और गर्दन में भी
1: जी।
2: और मैंने ब्रेन का भी MRI कराया था, वो भी नॉर्मल था, और मुझे चक्कर भी आते रहते हैं। ऐसा लगता है कई बार मैं कि गिरने लगता हूँ, गिरने लग जाता है। डॉक्टर साहब ने बताया कि डर बैठ जाता है, तो दर्द मुझे रेगुलर लेफ्ट कंधे में बहुत रहता है। स्पाइन का भी मैंने MRI कराया, वो भी ठीक आया था। तो एक तो ये बता दीजिए, दूसरा डॉक्टर विकास कहाँ पे बैठते हैं, थोड़ा ये मैं सुन नहीं पाया था।
0: जी जी जी जी जी मैं सरकारी सेवा में हूँ।

0: लेकिन ये है कि आप ये देखिए कि आपको लेफ्ट कंधे में दर्द रहता है। आपकी उम्र कितनी है?
1: मेरी उम्र जी 53।
0: 53 है। 53 में अगर कंधे में, लेफ्ट कंधे में दर्द रहता है तो आप एक बार शुगर की जांच कराइए, क्योंकि
1: शुगर भी
0: कभी
1: ठीक है जी।
0: शुगर नॉर्मल है आपकी, तो आपने अगर कोई वजन उठाया हो सकता है उसकी वजह से रहता हो, लेकिन नेक में भी आपने बताया कि दिक्कत रहती है,
1: हाँ
0: तो
1: जी, नेक
0: जो
1: में भी लेफ्ट साइड ही दर्द रहता है ज्यादा।
0: समझ गए समझ गए, तो पोस्चर से रिलेटेड हो सकता है। कोई गर्दन में आपको चोट तो नहीं लगी थी?
1: नहीं, चोट भी नहीं, और मैंने वजन वगैरह कुछ नहीं उठाया जी।
0: समझ
1: ये तो
0: गए
1: लगभग
0: समझ
1: पांच
0: गए
1: छह महीने हो गए, या
0: समझ
1: काफी
0: गए।
1: देर हो गई। दवाइयां
0: कभी
1: भी खाता रहता हूँ, कुछ
0: कभी
1: आराम
0: कभी
1: ही नहीं हो रहा।
0: कभी कभी क्या है, पोस्चरल होता है और ये स्लो डिजनरेशन होता है, तो उसकी वजह से हो जाता है, या कभी कभी जैसे 50 के बाद में ऑस्टियोफाइट्स बनते हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि कोई नस दबी हुई हो हल्की सी। तो आपने MRI ब्रेन तो करा लिया, लेकिन सर्वाइकल स्पाइन स्क्रीनिंग भी कराई जा सकती थी। लेकिन आपके लिए उचित ये रहेगा कि आप एक सॉफ्ट कॉलर इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी फिजियोथेरेपी करा सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं।
1: आप कौन से
0: ईटिंग
1: हॉस्पिटल में बैठते हैं, सरकारी में?
0: जी, मैं पहले राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में था, अभी भारत सरकार में हूँ। तो आप तो किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके और आप अपना इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि एक सामान्य तकलीफ है। लेकिन एक बात बिल्कुल खास है कि आप बता रहे हैं कि काफी समय से ये दिक्कत है, तो
1: मैं
0: इसको
1: ज्यादा देर
0: इस
1: खड़े भी नहीं हो पाता हूँ जी, मुझे
0: मैं
1: ऐसा
0: समझ
1: लगता है कि
0: गया
1: भाई मैं
0: आपकी बात, ये
1: चलने
0: सर्वाइकोजेनिक
1: वाला हूँ
0: वर्टिगो
1: कि मैं खड़े
0: बोलते
1: रह
0: हैं,
1: पाऊँ जी।
0: सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो की वजह से आपको ऐसा हो रहा है। लेकिन आप जो रिहैब है वो तो आपको करना पड़ेगा।
1: जी
0: देखिए, आपको जहां भी आपको लगे सीढ़ियां आप उतर रहे हैं तो आप रेलिंग पकड़ के उतरिए, नंबर एक। नंबर दो, अनइवन सरफेस पे केयरफुल रहिए। शाम को अगर अंधेरा है तो वहां पे डबली केयरफुल रहिए, आप
1: अकेले
0: गिर
1: मत
0: सकते हैं।
1: निकले, ये भी
0: अकेले अगर संभव हो तो आप किसी के साथ
1: साथ।
0: निकलें, बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, ये है कि आपको अपने वर्टिगो को मैनेज करना पड़ेगा।
1: सर
0: जी
1: एक बात,
0: जी
1: एक लास्ट लास्ट डॉक्टर साहब, मुझे छोटी सी ये बात है, मैं मान लो मैं सरकारी हॉस्पिटल में किसी भी जाऊं तो किस स्पेशलिस्ट को दिखाऊं, इसके क्या बीमारी से
0: देखिए,
1: रिलेटेड हो?
0: आपको पहले तो ऑर्थोपेडिक्स को दिखाना पड़ेगा। ऑर्थोपेडिक्स को दिखाने के लिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हो सकता है कोई आपको MR एंजियोग्राफी सजेस्ट करे, लेकिन आपका जो कॉज है वो वैस्कुलर लग नहीं रहा। तो नॉर्मली एंजियोग्राफी, MR एंजियोग्राफी हम वैस्कुलर कॉज को रूल आउट करने के लिए करते हैं। लेकिन ये भी होता है कि बहुत बार देखिए हार्ट में तकलीफ है, लेकिन आपका जो वर्टिगो है वो नॉन कार्डिक कॉज की वजह से होता है। तो आप तो एक सरकारी अस्पताल में जाके इवेल्युएशन करवाइए तो पता
1: जी
0: चलेगा।
1: जी जी उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। साथियों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वर्टिगो सिम्टम्स कॉजेज एंड क्योर, और इस पर हमारे साथ हैं हमारे दो विशेषज्ञ डॉक्टर विकास ढिकव और डॉक्टर विनीत गुप्ता। डॉक्टर विनीत, अभी आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे पोजिशनल वर्टिगो, उसको कैसे कोई आइडेंटिफाई कर सकता है?
2: बेसिकली मैडम, पेशेंट को बस इतना ही जज करना है जो पोजिशनल वर्टिगो होता है उसमें कि क्या उसको चक्कर हर कोई मूवमेंट कर रहा है, या हमारे जो है पोजीशन चेंज कर रहा है, बेड पे लेट रहा है या लेट के बैठ रहा है या करवट बदल रहा है, उस टाइम पे चक्कर आ रहे हैं या चक्कर बढ़ जा रहे हैं, तो ये पोजिशनल वर्टिगो होता है
1: जी।
2: ये मतलब सिंपल सा है, अगर इतना वो जज कर लेते हैं तो उनको कुछ बहुत ज्यादा कुछ नहीं, सीधे कि ENT स्पेशलिस्ट के पास जाएं और बोलें कि मुझे ऐसा हो रहा है, पोजीशन चेंज करने पे हो रहा है, पोजिशनल वर्टिगो टाइप का हो सकता है। और इसके लिए फिर एक टेस्ट होता है।
1: मैं पूछने वाली थी कि इसके लिए टेस्ट कौन-कौन से हैं?
2: जी, एक तो जो केबल डेफिनेटिव की पोजिशन चेंज करने पर, उसके लिए हम वीडियो निस्टेग्मोग्राफी एक टेस्ट रहता है, उसमें हम एक गॉगल पहनाते हैं जो 3D गॉगल्स आजकल मॉल्स एरा में आपने देखे होंगे, उस टाइप का गॉगल सॉफ्टवेयर रहता है। टीवी पर हम उनके आईज के मूवमेंट रिकॉर्ड करते हैं।
1: अच्छा।
2: और उस आईज के मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करके हम ये जज करते हैं कि उसके एक कान में हमारे 3 बैलेंसिंग कैनाल होती हैं, तो हमारे किस ईयर में कौन सी बैलेंसिंग कैनाल में हमारा पार्टिकल पथरी बन गई है जो कि हमारे बैलेंसिंग ऑर्गन को डिस्टर्ब कर रही है, तो वो असिस कर लिया हमने, तो उसके लिए सिंपल सी एक्सरसाइजेस होती हैं, वो कराते हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है
1: जी।
2: इस पूरे प्रोसीजर में हार्डली 30-40 मिनट्स लगते हैं और 30-40 मिनट्स में पेशेंट एकदम ठीक हो सकता है
1: जी। डॉक्टर विकास, अगर न्यूरो की बात करें तो आप कौन कौन से टेस्ट सजेस्ट करेंगे?
3: जी देखिए, डिपेंड करता है, सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि चक्कर से ये मैनिफेस्ट करता है, जैसे मान लें कोई 45 ईयर ओल्ड मेल चक्कर के साथ आता है, अदरवाइज फिट है, कार्डियक कोई कॉज नज़र नहीं आता है, उसको कोई इस्कीमिक इवेंट नहीं नज़र आती है, इस्कीमिक इवेंट से बोलें कि हाथ पांव में कोई कमजोरी नहीं आई है, तो फिर हम बोलते हैं कि कम से कम एक ब्रेन स्कैन करवाइए या MR एंजियोग्राफी, अगर हमें लगे कि ये इस्कीमिक इवेंट है, यानी कि ब्लड फ्लो ब्रेन का कम होने की वजह से ऐसा हो सकता है। तो ये दो बेसिक टेस्ट हैं। अगर ये दोनों नॉर्मल है तो हम बोलते हैं कि सर्वाइकल स्पाइन की स्क्रीनिंग भी आप करा लें, कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऑस्टियोफाइट हो या फिर जिसको बोलें कि PIVD हो सर्वाइकल एरिया का, तो वो आइडेंटिफाई हो जाता है। तो जब इसको बोलें कि ब्रेन एंड नेक नॉर्मल है तो सेंट्रल कॉज ऑलमोस्ट रूल आउट हो जाता है, लेकिन फिर आते हैं फंक्शनल सेंट्रल कॉज, मतलब स्ट्रक्चरल सेंट्रल कॉज रूल आउट हो जाता है। जो फंक्शनल कॉज है उसमें बोले वेस्टिबुलर माइग्रेन एक कॉमन कॉज है, तो वेस्टिबुलर माइग्रेन अक्सर जैसे मैंने बताया चक्कर से मैनिफेस्ट करता है, उल्टी जी खराब होता है और हेडेक जो है कभी कभी होता है, सिर में भारीपन रहता है, ज़्यादा नहीं होता है। इसका जो एसोसिएशन अक्सर हाइपरटेंशन के साथ होता है, तो BP चेक करें, और अगर मान लिया ब्लड प्रेशर है तो ECG और ECO दो बेसिक टेस्ट है वो साथ में करवा लेते हैं। तो ये बेसिक टेस्ट की बैटरी है। इसके अलावा सबसे पहले तो देखिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन से ही पता चल जाता है कि ये कॉज जो है ये सेंट्रल है या पेरिफेरल है। तो अगर सेंट्रल कॉज है तो

0: कुछ पॉइंटर्स हैं सेंट्रल कॉज के कि एक तो वो एपिसोडिक नहीं होता, वो जनरली मरीज खुद बोलता कॉन्टिन्यूस होता है, नहीं तो जो पेरिफेरल वर्टिगो होता है वो कुछ सेकेंड्स या मिनट तक होता है, उसके बाद में ठीक हो जाता है और ये चलता ही रहता है। फिर दूसरा ये है कि अगर स्ट्रेस रिलेटेड हो तो अक्सर ऐसा होता है कि मरीज जो हैं कोई हाई प्रेशर ड्यूटी कर रहे हैं, जैसे गार्ड हैं या आर्मी पर्सनल हैं तो, या सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, तो उनको कभी कभी ऐसा होता है। तो जब आपको ये पता चल गया कि ये प्रोबेबल कॉज है, तो डिपेंडिंग अपॉन के पॉइंटर कहाँ है, क्लिनिकल पॉइंटर कहाँ है, तो उसके हिसाब से आप इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं।
1: इसके साथ ही सर मैं ये जानना चाहूँगी कि किस तरह ये डेली रूटीन को प्रभावित करता है कुछ लोगों को, क्योंकि वॉमिटिंग आना ऐसे टाइम में या वॉमिटिंग जैसा फील होना, क्या कहेंगे आप?
0: जी देखिए, जोखिम तो काफ़ी हो सकता है कि जो इस्कीमिक इवेंट्स हैं उसका पता नहीं चलता, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक आज हो जाए, TIA जिसको बोलते हैं, और कुछ समय के बाद स्ट्रोक हो जाए, तो इससे बड़ा जोखिम क्या होगा? स्ट्रोक तो लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट है, एक बात। अच्छा, दूसरा ऐसा होता है जैसे पार्किंसोनिज्म एक बीमारी है, एक होता पार्किंसन डिजीज और एक होता पार्किंसोनिज्म, जो अक्सर ऐसा होता है कि आपने मानसिक बीमारी के लिए दवाई लंबे समय से खाई है, तो उसके बाद में रिजिडिटी हो गई या पिल रोलिंग ट्रेमर हो गए, जैसे बोलें कि आपकी आपकी इंडेक्स फिंगर और आपका थंब जो अपने आप हिलने लग गए, तो आप जो चाय की ट्रे सुबह सुबह लेके जाते हैं तो वो आपके हाथ शेक करते हैं, तो फिर चलने में इनकोऑर्डिनेशन होता है। तो मेरे कहने का मतलब पार्किंसोनिज्म में भी ऐसा हो सकता है कि आपको चक्कर आए, तो आप ये देखिए कि ये अब सेंट्रल कॉज है लेकिन इसकी जो बोलें कि कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज़्यादा होगी। फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो अक्सर यंग लोगों को होता है, टीनेज में होता है, 20-22-25 साल पे होता
1: इसका
0: है,
1: एज ग्रुप
0: तो एज ग्रुप नॉर्मली वर्टिगो 40 के बाद होता है, लेकिन जो जिसको बोले कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस 20 और 40 के बीच में यंग लोगों की बीमारी है, और ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो विटामिन डी कम होगा तो MS होने का खतरा थोड़ा बढ़ता है, तो ये भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये कि इसमें सेंट्रल जो कॉज है, ब्रेन से रिलेटेड जो कॉज होते हैं, क्योंकि वर्टिगो दो ही किस्म के होते हैं, कान से रिलेटेड या दिमाग से रिलेटेड, तो इसमें जो दिमाग से रिलेटेड है इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको बस ये देखना पड़ेगा कि कॉज क्या हो सकता है और कॉज के हिसाब से ही फिर इलाज होगा। हम ये बोलते हैं, देखिए कुछ जो जनरल प्रिकॉशन जो पहले बता चुके हैं तो मरीज को सबको समझाते हैं, लेकिन सबसे पहले होता है मैनेजमेंट, कि आपको ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं कि जो कि कान के सिग्नल जो ब्रेन में एक्सेसिवली जा रहे हैं या ब्रेन से जो सिग्नल कान की तरफ जाने चाहिए उसमें कोई अबनॉर्मैलिटी है तो उसको शांत किया जाए, नंबर एक। नंबर दो, जो स्टडीनेस है पोस्चर की उसको एक किस्म से लाया जाए, तो दो चीज़ें तो करते हैं ताकि गिरने का खतरा कम हो जाए। और मरीज़ को बोलते हैं कि घर में बाथरूम में आप मैट लगा के रखिए, कि मैट अगर आप रखते हैं दोनों घर में और बाथरूम में, तो अगर आप गिर भी गए गलती से तो आपको हेड इंजरी नहीं होगी।
1: जी डॉक्टर विनीत, आपसे जानना चाहूंगी कि कई केसेस में वर्टिगो अचानक से होता है, उसका क्या कारण होता है?
2: मैडम देखिए, अचानक से होने का एक हमारे ENT में होती है, ईयर से रिलेटेड कॉज होता है मीनियर्स डिसीज।
1: जी,
2: उसमें पेशेंट अचानक से चक्कर आएगा और गिर जाएगा। बस जो हमारी दो कंडीशन हैं जो कि हमारे न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से काफी मैच करती हैं।
1: जी,
2: एक तो मीनियर्स डिसीज,
1: हाँ,
2: और एक वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस। मीनियर्स डिसीज में क्या रहता है, उसको मल्टीपल एपिसोड्स आते हैं और वो 1 or 2 days रहेंगे, चक्कर आएंगे, उसमें वॉमिटिंग होगा और पेशेंट फोर्सफुल हिस्ट्री का कि मैं साहब चल रहा था और चलते चलते गिर गया और फिर मेरे को 5-10 मिनट में देखा तो मैं एकदम ठीक था। और उसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो ऑरा के सिम्टम, मतलब उसको पहले से वो जज कर सकता है कि हाँ मुझे जैसे सर भारी होना, कान में भारीपन होना, कान में शाए की आवाज़ होना, और उसके साथ साथ उसको जैसे मल्टीपल एपिसोड्स होते जाएंगे तो उसके साथ उसको हियरिंग भी थोड़ा डिक्रीज होगा, तो ऑडियोमेट्री टेस्ट से हम उसको असेस कर लेते हैं कि हाँ इनका हियरिंग भी डिक्रीज हो रहा है, मल्टीपल एपिसोड हुए, तो मीनियर्स डिसीज है। सेम थोड़ा सा मिलता है वो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से मिलता है वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस, उसमें हमारी जो हियरिंग नर्व है उसमें इन्फेक्शन या स्वेलिंग आने की वजह से हमारे को जो है चक्कर आते हैं। उसमें और ब्रेन से होने वाले में दोनों में चीज़ सिमिलर होती है कि थोड़ा सा जो चलने की प्रॉब्लम है वो हमारे वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस वाले पेशेंट को भी होती है, तो वो हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है टेस्ट के थ्रू कि ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है या नर्व का इधर इन्वॉल्वमेंट हुआ कान की।
1: इसके साथ साथ हमारे पास कई व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आ रहे हैं। निसार मास्टर हमें लिख रहे हैं कि इनकी उम्र 73 साल है और जब ये सुबह उठते हैं तो इनको चक्कर आते हैं और दिन में लेट कर उठते हुए इनको चक्कर आते हैं, तो प्लीज बताएं कि ऐसा क्यों है।
2: ये मैडम ये BP का प्रॉब्लम है, पोजिशनल।

0: पट्टी को
1: जिसके बारे में अभी आपने
0: जिसमें अभी मैंने बताया ये वही है।
1: और हमारे को एक और मैसेज आया है बलबीर जी का, वो लिख रहे हैं कि जब मैं थोड़ा टांगों के बल 5 मिनट बैठकर उठता हूँ तो एकदम आंखों में अंधेरा आ जाता है आंखों के आगे। इनकी उम्र 70 वर्ष है।
0: ये मैडम पोस्चरल हाइपोटेंशन हो सकता है।
1: जी जी जी तो, डॉक्टर साहब एक और कॉलर पे कॉलर पे हमारे साथ कॉल लाइन पे कॉलर है जो ले लेते हैं इनका कॉल भी। हेलो
0: जी।
2: हेलो
1: जी।
2: हाँ मैम, मेरा नाम रमेश है
1: जी
2: और मेरी वाइफ आरती है, 65 एज है
1: जी।
2: वो जब सुबह उठती है तो उनको थोड़ा चक्कर सा लगता है
1: जी।
2: और उसके बाद थोड़ा हेडेक भी होता है, उसका वॉमिटिंग टेंडेंसी भी लगती है। उसके बाद 5-6 घंटे रेस्ट कर लेती हैं तो काफी बेटर हो जाता है। डॉक्टर को दिखा के सारे टेस्ट वगैरह कराए थे, MRI कराया था, सब चीज क्लियर है
1: जी।
2: तो मैं आपसे डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कारण हो सकता है और हम आगे कैसे बढ़े। और दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपका ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया चल रहा है। आप दोनों डॉक्टर्स को और प्रेजेंटर को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऐसे कार्यक्रम करते रहे, बहुत ही जानकारी अच्छी मिल रही है
1: जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। जो मुझे लगता है आपकी जो धर्म पत्नी है उनको पोजिशनल वर्टिगो है, क्योंकि वो सुबह उठती हैं तब उनको चक्कर आता है, 5-6 घंटे रहता है, फिर वो थोड़ा सा अडेप्टेशन आ जाता है उनकी बॉडी को, क्योंकि ये लंबे टाइम से चल रहा है। तो इसके लिए आप एक ENT स्पेशलिस्ट के पास जाइए जो कि चक्कर का इलाज करते हो, और इसके लिए एक टेस्ट रहता है वीडियो निस्टेग्मोग्राफी, वो टेस्ट कराएं और उसके बाद उनका एक एक्सरसाइज होगा और वो ठीक भी हो जाएंगी।
1: सर द्वारका दिल्ली से यशपाल हमें लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा कार्यक्रम है और इन्होंने हमें शुभकामनाएं दी हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। ये लिख रहे हैं कि इनकी एक रिश्तेदार हैं जो जिनकी उम्र 40 साल है, वो लिख रहे हैं कि ये वर्टिगो है और ये इसकी मेडिसिन लेती हैं, क्या फिजियोथेरेपी इनको एडवाइस की जा सकती है और क्या ये फिजियोथेरेपी वर्टिगो में इनकी हेल्प करेगी?
3: देखिए डिपेंड करता है कि इनको क्या कॉज निकल के आता है। यंग पेशेंट्स में अक्सर ऐसा होता है कि सर्वाइकोजेनिक होता है, विमेन में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जिसको बोलते हैं, कि वो हो सकता है। तो एक प्लेन सिंपल इन्वेस्टिगेशन है जिसको बोलते हैं एक्सरे नेक, AP और लेटरल व्यू, या सर्वाइकल स्पाइन स्क्रीनिंग विद द MRI ब्रेन, वो करा सकते हैं। तो दो ये टेस्ट हैं वो करवा सकते हैं। इसके अलावा देखिए बहुत सारी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज होती हैं जिनसे इनको रिलीफ मिल सकता है, लेकिन सबसे पहले कॉज आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो जब तक कॉज आइडेंटिफाई नहीं होगा तो एक किस्म से ट्रीटमेंट नॉन स्पेसिफिक हो जाएगा।
1: जी जी जी। सर पुष्पेंद्र गर्ग हमें टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से लिख रहे हैं कि इनकी माता जी की उम्र 56 वर्ष है और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि गले में कुछ फांस जैसा फंसा हो। इन्होंने ENT भोपाल में भी दिखाया है, एंडोस्कोपी करवाई है, उसमें आहार नाल में लाल लग रही है जो एसिडिटी लग रही है, तो गैस की दवा दी लेकिन आराम उनको नहीं मिला, क्या करें?
0: गैस की दवा जो आप सही बताया उन्होंने, इसको हम लैरिंगोफेरिंजियल रिफ्लक्स डिसीज बोलते हैं
1: जी।
0: जिसमें कि साइलेंटली आपको फील नहीं होगा कि आपका एसिड ऊपर आ रहा है, बट पेट से एसिड ऊपर आता है और हमारे गले में जो है वो स्वेलिंग कर देता है। तो उसकी वजह से मरीज को गले में ऐसा लगता है मेरे गले में कुछ चुभ रहा है या कुछ फंसा हुआ है। तो एक तो इनको खाने पीने में बहुत सारी प्रिकॉशंस रखनी होंगी, तेल चिकनाई का खाना बंद करना होगा और खाने के बाद 2 घंटे तक लेटना नहीं है। खाना जो है थोड़ा हल्का खाना है, स्मॉल और मल्टीपल मील, थोड़ा थोड़ा खाएं मगर दिन में ज़्यादा बारी खाएं, और चाट पकौड़े, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी, इन सब का परहेज भी करना होगा, और दवाई भी रेगुलर इनको 1.5 से 2 महीने के लगभग खानी होंगी, तब जाकर के ये ठीक रहेंगे
1: जी। इसके साथ साथ सर पूजा का दिल्ली से मैसेज आया है कि उन्हें लेटने पर राइट साइड में चक्कर आते हैं, इसका रीजन क्या है?
0: इसका रीजन जो है मैडम, आपके जो हमारे ईयर में जो बैलेंसिंग कैनाल्स हैं उसमें किसी एक कैनाल में आपके पार्टिकल मतलब स्टोन फॉर्मेशन हो गया है, तो उसकी वजह से जब हम करवट चेंज करते हैं तो वो पार्टिकल जो है हमारे जाकर के बैलेंसिंग ऑर्गन को स्ट्राइक करता है और उसकी वजह से आपको चक्कर आ रहा है।
1: सर एक और मैसेज है हमारा, हमें हमारे पास दिल्ली से गायत्री का, वो लिख रही है कि जब ये सुबह उठती हैं तो उन्हें चक्कर और सिर में भारीपन लगता है, ऐसा रोज नहीं कभी कभी होता है, और चलते हुए नीचे या ऊपर देखने पर चक्कर जैसा महसूस होता है, BP शुगर चेक कराया, दोनों समस्या नहीं है।
0: जी मैडम, अब इसमें बेसिकली सुबह सो के उठने के बाद अगर तुरंत हो रहा है तो कई बार हमारा वो पोस्चरल हाइपोटेंशन भी हो सकता है कि हम सिटिंग से जब स्टैंडिंग पोजीशन में आते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर है वो टाइम बिंग ड्रॉप करता है। तो उसके लिए एक तो अपना हाइड्रेशन मेंटेन करें
1: जी,
0: पानी खूब पिए और अपना प्रॉपर स्लीप लें। अगर

0: बाद भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो उनको वही ENT स्पेशलिस्ट, वर्टिगो स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए और एक बार अपना चेकअप कराना चाहिए।
1: सर आपने स्लीप की बात की, तो क्या रात में देर से सोने पर ऐसा प्रॉब्लम होता है ये वर्टिगो?
0: हाँ मैडम,
1: सुबह उठने पर या
0: अगर स्लीप प्रॉपर नहीं हो रहा है तो हमारा ब्रेन की फंक्शनिंग तो सब नॉर्मल ही रहेगा। तो कई बारी चक्कर को अच्छे से पेशेंट जो है डिफाइन भी नहीं कर पाता कि मुझे चक्कर है। कई बारी सर भारी को भी पेशेंट ये बोलता है मुझे चक्कर है। कई बारी जनरलाइज बॉडी वीकनेस भी होती है तो भी पेशेंट बोलता है मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो एक तो चक्कर की डेफिनेशन पहले तो जब पेशेंट दिखाता है तो उससे हम ये पूछते हैं कि भाई आपको क्या लगता है, गोल गोल घूमा लगता है या आप गोल गोल घूमते हो या चीजें गोल गोल घूम रही या आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ है। तो इन चीजों में डिफ्रेंशिएटेड करके ही हम पता कर पाते हैं कि उसको एक्चुअल में चक्कर की प्रॉब्लम है कि नहीं है।
1: जी सर, इसी से जुड़ा सवाल मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी कि जो वर्टिगो की समस्या है क्या ये खराब लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकती है, और जीवन शैली में सुधार और खान पान में अगर ध्यान दें तो कितना काम कर सकता
0: जी
1: है?
0: मैडम, ये चक्कर की जो BPVB की प्रॉब्लम है, पोजिशनल वर्टिगो, ये यूजली फीमेल्स में होती है, मतलब मोर कॉमन है फीमेल्स में, क्योंकि फीमेल्स में एक तो कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी रहती है जल्दी, 45 के बाद में सभी को कैल्शियम डिप्लीशन होता ही है, और विटामिन डी की भी रिक्वायरमेंट बहुत होती है। अगर आप सनलाइट नहीं ले रहे हैं तो आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, तो वो लाइफस्टाइल से एसोसिएटेड हो गया, और आपको साथ में जो है कैल्शियम भी अच्छा चाहिए, हाइड्रेशन भी मेंटेन करना, ये तीन चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं। और कई बारी हम ध्यान नहीं देते, माइनर हेड ट्रॉमा भी हमारे को ये पोजिशनल वर्टिगो करा सकता है। पार्टिकल नॉर्मल जगह से इस जगह पर कैनाल में ला करके बैलेंसिंग कैनाल में शिफ्ट कर सकता है, ट्रॉमा भी, तो उसकी वजह से भी हो सकता है।
1: कुछ खाने पीने की ऐसी चीज़ें होती है जिनसे ये होता है या ये सिर्फ मिथ है?
2: इसमें देखिए दो तीन चीज़ें हैं, काफ़ी स्टडीज ये सजेस्ट करती हैं कि अगर आप नमक से सैचुरेटेड डाइट को लेते रहते हैं बहुत लंबे समय तक या जंक फूड ज़्यादा खाते हैं तो आपको मीनियस डिजीज़ का खतरा ज़्यादा होता है, या फिर ये कि आपको टिनिटस हो सकती है, आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, या आप एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं और इतना ज़्यादा वजन उठाते हैं जो कि आपकी नेक और शोल्डर सपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो आपको क्रॉनिक डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज़ का खतरा भी रहता है। तो ये दो लाइफस्टाइल जो प्रॉब्लम्स हैं ये वर्टिगो के लिए सीधी जिम्मेवार है, ऐसा समझा जा सकता है। इसके अलावा हम ये नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल बोले तो वर्टिगो करेगा, लेकिन हाँ एक्सेसिव स्क्रीन टाइम एक्सपोजर जो कि 4-6 घंटे तो आजकल नॉर्मल है ही, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है 12 घंटे 16-16 घंटे आप स्क्रीन देख रहे हो तो उसके बाद में जब आप
1: फोन लैपटॉप
2: डिजिटल दुनिया से जब आप बाहर निकलते हो और आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो भी आपको स्पिनिंग सेंसेशन हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज बोलना बड़ा जरूरी है, एक चीज होता है वर्टिगो, दूसरा होता है डिजीनेस, तो दोनों अलग अलग तकलीफ है और अलग अलग बीमारियों का संकेत देती हैं। वर्टिगो का मतलब है कि आपको चक्कर आ रहा है, या तो आप घूम रहे हैं या आपके आसपास की दुनिया घूम रही है, घूम कोई नहीं रहा है लेकिन सेंसेशन है। डिजीनेस का मतलब है कि आप अनस्टडी हो गए हैं। अब अनस्टडीनेस ये भी हो सकता है क्योंकि आपका सिर घूम रहा है, आप नहीं घूम रहे आपका सिर घूम रहा है, लेकिन सिर घूमने की वजह से आप अनस्टडी हो गए, ये हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि डिजीनेस जो है वो वर्टिगो का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। लेकिन हाँ, जब वर्टिगो डिजीनेस में कन्वर्ट हो जाता है तो आप चक्कर खा के गिर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज बोलना बड़ा जरूरी है कि जो ऑरा होता है, जैसे मीनियर्स में ऑरा होता है, तो मीनियर्स का जो ऑरा है वो एपिलेप्सी के ऑरा जैसा हो सकता है। एपिलेप्सी मतलब मिर्गी की बीमारी का ऑरा, और दोनों एक किस्म से एक जैसे हो सकते हैं, जैसे आंखों के सामने तारे टिमटिमाना या सिर में एकदम से घुमावदार सेंसेशन पैदा होना, या फिर मूड खराब होना, उल्टी होना, जी मितलाना या बेहोशी जैसे सेंसेशन होना। अल्टीमेटली चाहे वर्टिगो हो या डिजीनेस हो या दोनों एक साथ हो, तो एक थोरो इवैल्यूएशन तो चाहिए, उसके बाद ही पता चलता है कि कॉज क्या है।
1: सर स्ट्रेस कितना इसके लिए जिम्मेदार है?
2: वन ऑफ द कॉमन कॉज है, ये अंडररेटेड है। दुनिया में 80 करोड़ लोगों को वर्टिगो है और 30-40% जनसंख्या दुनिया की ऐसी है जिन्होंने वर्टिगो एक्सपीरियंस किया है। ऐसा माना जाता है कि कभी ना कभी किसी न किसी को वर्टिगो का एक एपिसोड तो होता ही है। ये इतनी कॉमन आम बीमारी है। तो अब बात आती है कि स्ट्रेस तो यूबिक्वेटस है, हम सबको स्ट्रेस होता है, जब तक थोड़ा बहुत स्ट्रेस है तो यू स्ट्रेस है तो वो तो सही है, लेकिन जब ये एक्सेसिव प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस हो जाता है तो इनएस्केपेबल हो जाता है, तो तब ऐसा हो सकता है कि एंजाइटी जनरेट हो और एंजाइटी की वजह से आपको स्पिनिंग सेंसेशन।
1: आप दोनों से जानना चाहूंगी कि क्या ये वर्टिगो जड़ से खत्म हो सकता है?

0: डिपेंड करता है मैडम कारण क्या है। अगर वो ट्रीटेबल कॉज है, सेंट्रल लीजन नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट के मैं बोलता हूँ वर्टिगो जड़ से ठीक हो सकते हैं। अब जैसे हमारा ये पोजिशनल वाला है, इसमें पार्टिकल बार बार ही फॉर्मेशन होने की कई बार टेंडेंसी होती है, तो उसको आप विटामिन डी, कैल्शियम एनरिच रखें, कैल्शियम लेते रहें और मैग्नीशियम भी लेते रहें, मैग्नीशियम का भी रोल आ गया है आजकल, और अपना हाइड्रेशन मेंटेन करें। तो ये बेसिक अपना रखेंगे अच्छा नॉर्मल, इस पर ख्याल रखेंगे हाइजीन पर, तो आपके जो इंसिडेंसेस हैं, जो होने की टेंडेंसी है, वो कम हो जाएगी।
1: जी प्रिवेंशन पॉसिबल है। तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी ना पिए, अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी पीते रहें, जंक फूड से बचें, तो मिडल ईयर का प्रेशर भी कम रहेगा। और इसके अलावा आपको जो हाइपरटेंशन होने की टेंडेंसी है, तो वो टेंडेंसी आपकी कम हो जाएगी। तो एक किस्म से टू सम एक्सटेंट प्रिवेंशन पॉसिबल है, लेकिन हाँ, ये करके इसको, बीमारी को मिटिगेट किया जा सकता है, इसको काबू में किया जा सकता है।
2: जी डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि क्या ये वंशानुगत है, और गर्भवती महिलाओं में ये समस्या आती है तो इसका कारण क्या हो सकता है?
1: पहले सवाल का जवाब तो है ना, मतलब ये जेनेटिक नहीं है। जहाँ तक प्रेग्नेंट वेमेन की बात है, देखिए प्रेग्नेंट वेमेन में वर्टिगो का कोर्स सेम होता है एज दैट ऑफ नॉन प्रेग्नेंट वेमेन, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस डेंजरस हो सकते हैं कि अगर चक्कर खा के गिर गए तो दो नुकसान होंगे, बेबी को और मदर को। सो एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है। फिर दूसरा, क्योंकि प्रेगनेंसी में पोस्चर भी चेंज होता है, क्योंकि देखिए वजन बढ़ता है, 9-10 किलो तक वजन बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से जो पोस्चर में चेंज आता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने का चांस ज़्यादा होता है, तो वर्टिगो की संभावना भी आम लेडी से थोड़ी ज़्यादा होती है।
2: आप क्या कहेंगे?
0: जी मैडम, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी में और भी ज़्यादा टेंडेंसी होती है कैल्शियम डेफिशिएंसी की, तो चांसेस कई बार बढ़ जाते हैं। तो जैसा सर ने बोला कि ख्याल तो रखना ही है और डबल रिस्क भी है
2: जी,
0: तो इसलिए आपको अपना डॉक्टर से, जो गायनिकोलॉजिस्ट हैं, उनसे कंसल्ट करते हुए कैल्शियम वगैरह अपना टाइम टू टाइम लेते रहना चाहिए। वो उनको ऐसा नहीं है कि कैल्शियम दे रहे हैं तो डॉक्टर बेकार में दे रहे हैं, वो आपकी बॉडी के लिए जरूरी है।
2: तो मैं आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगी कि वर्टिगो की समस्या ना हो, इसके लिए हमें क्या ऐसा करना चाहिए जिससे हम सेफ रह सके?
0: मैडम, एक तो पहले अपना जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल है, थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहे, और आज की तारीख में थोड़ा सा न्यूरोलॉजिकल इंजरीज भी हो रही है हमारे मोबाइल एब्यूज की वजह से, ओवर यूज की वजह से, तो उससे भी बचना चाहिए, क्योंकि उससे आजकल टिनिटस और डिक्रीज हियरिंग भी हो रहा है। और बाकी जैसा मैंने बोला, विटामिन डी, हाइड्रेशन, और सर ने भी जैसे अभी बोला था कि एक्सेसिव एक्सरसाइज, जिसकी वजह से हमारे नेक में डिजेनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं, तो वो सब चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। सारी चीज़ें आपको अपने एक एक्सटेंड तक, एक लिमिट में ही अच्छी रहती हैं, तो वही करना चाहिए।
1: हेल्दी लाइफस्टाइल, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। सो हेल्दी लाइफस्टाइल से तो ये जो इंजरी की संभावना कम हो जाएगी, और जो बाकी बीमारियां हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, उनका चांस कम हो जाएगा। लेकिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से नर्व्स मजबूत होती हैं, जैसे वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस है तो उसकी संभावना कम हो जाएगी, या जो ट्रांजियन इस्कीमिक अटैक, उसकी संभावना कम हो जाएगी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो वो हमारी सेहत के लिए इन जनरल जरूरी है।
2: हाइड्रेट रखें
1: बिल्कुल, गर्मी में बहुत आवश्यक है।
2: जी जी, और उसके साथ फोन से थोड़ी सी दूरी बना के रखें, बहुत जरूरी है।
1: हाँ, ये हमने कार्यक्रम किया था डिजिटल डिमेंशिया में, तो उसमें एक टीनेजर को आकाशवाणी ने बुलाया था, तो उसने काफी अच्छा बोला कि देखो, मेरी उम्र के जो बच्चे हैं, जो मोबाइल में घुसे रहते हैं, दुनिया जो मोबाइल से बाहर है, दुनिया पार्क में है, दुनिया साइकिलिंग में, स्विमिंग में है।
2: बहुत बढ़िया। तो साथियों, ये था हमारा आज का विषय, जो जुड़ा था वर्टिगो सिम्टम कॉजेज एंड क्योर्स से, और इस पर हमें बेहद खास जानकारी दी हमारे विशेषज्ञों ने, डॉक्टर विकास ढिकव, जो है न्यूरोसाइंटिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और डॉक्टर विनीत गुप्ता, जो है ENT स्पेशलिस्ट। डॉक्टर साहब, आप दोनों यहाँ आए और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, आज के लिए अपनी दोस्त पूजा को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।
0: नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: लो जी नमस्कार सत श्री अकाल आदाब ते एफएमएनएक 102.7 मेगा हर्ट्ज़ आकाशवाणी जलंधर दा ए रेनबो चैनल है ते आज जोरावर सिंह इज हियर ते तुसी अपना शो एंजॉय करोगे जिदा नाम है हैलो जलंधर ते की हाल चाल श्रोतियां दा भाई शाम बड़ी सुहावनी हो गई है बड़ी मज़ेदार हो गई है कहिंदे ने हसण नाल उम्र वधदी है हुण ये नहीं पता कि किन्नी वधदी है पर जे गुआंढी दीआं गल्लां सुण के भी तुसीं हस रहे हो तां समझ लो रब ने तुहानूं वाधू बोनस दे दित्ता है। सत श्री अकाल जी जलंधर वालिओ, मैं कहा जी शाम दीआं ढेर सारीआं मुबारकां। उम्मीद है कि अज तुहाडा दिन चाह दे कप वांग गर्म, समोसे वांग मज़ेदार ते पंजाबी गप्पां वांग लम्मा चल रहा होएगा। ते लाओ जी हा हा हा भी बड़ा जरूरी है जिंदगी दे विच। तुसीं सुन रहे हो हैलो जलंधर, जिथे टेंशन नू मिलदी है छुट्टी, मुस्कान नू मिलदा है माइक ते हासे नू मिलदी है पूरी आजादी। दोस्तों जिंदगी भी कमाल दी चीज़ है ना। सवेरे अलार्म वजदा है तां लगदा है कि दुनिया दा सब तो वड्डा दुश्मन यही है। दफ्तर जांदे हो तां बॉस पुछदा है कम कित्थे तक पहुंचा भाई, ते घर आउंदे हो तां मां पुछदी है
1: व्याह कदों कराउणा पुत।
0: देखो किन्नी मजेदार जिंदगी ना, पर यह गल पक्की है जी जे बंदा हसना ना छड़े तां अद्धियां मुश्किलां आप ही राह भुल जांदियां ने। अज असी गल्लां करांगे उन्हां मजेदार पलां दीआं जो हर घर विच हुंदे ने। ओ प्यो जी जो रिमोट लभदे लभदे सारे घर नूं सिर ते चक लैंदे ने कि ओ रिमोट कित्थे आ, उन्हां दे अपने हाथ विच ही हुंदा है। दसो कैसी गलबात है। ओ मावां जो कहिंदियां ने मैनूं कोई काम नहीं कराउणा, मैनूं कोई काम नहीं कराउणा, ते अगले ही पंजां मिंटां विच 10 काम गणवा दिंदियां ने। कमाल दी गल है ना। ते ओ दोस्त जिहड़े कहिंदे ने यार बस 5 मिंट च पहुँच गया, बस 5 मिंट वेट करी, ते उन्हां दे 5 मिंटां दा टाइम जोन किसी होर ही ग्रह दा हुंदा है। सो अज दी दोपहर नहीं अज दी शाम विच ना कोई टेंशन ना कोई फिकर, अज सिर्फ हसना है मुस्कुराउणा है ते जिंदगी नूं कहना है आ जा भैणे, और जिन्हें इम्तिहान लैने ने लै लै, असी भी पंजाबी हाँ हस के पेपर देवांगे। ना अपनी चाह नेड़े रखो, मुस्कान चेहरे रखो और दिल दे दरवाजे खुले रखो, क्योंकि अगला एक घंटा तुहाडे नाम, तुहाडियां गल्लां दे नाम, तुहाडियां यादां दे नाम, उस हासे दे नाम जो सब तो वधिया दवाई है। मैं हाँ तुहाडा अपना मेजबान दोस्त आरजे जोरावर सिंह, ते तुसी सुन रहे हो हैलो जलंधर। ओ हो हो हो, एक तो जरूरी गल तो मैं कहनी भूल गया, नंबर नोट करो, तुसी साढ़े नाल गलबात कर सकते हो। नंबर है जी 0181-23-42-174 0181-23-42-174 पर आप हमें कॉल करके अपनी डिमांड बता सकते हैं। अंग्रेजी सुनो जी 0181-23

0: महाराज जी क्या बात है। वैसे ना मेरा हाथ सता निकलिया क्योंकि ना साडे दरम्यान ना इतने चाचा जी पहुंच चुके ने।
1: ओए इत्थे रहो, तेनू मैं दसा तेरे जेड़े बड़े हासे निकल दिया। मैं अनाउंसमेंट करता तेनू की करनी आउंदी आ। हां इन्ना सोहना गाना चलन दिया है, दस भी तेरे अच्छा लग पिया है। आ लिया मैं तेनू गाना सुनाउना। सजन राजी हो जावे फिर भी तरौला नहीं पाई दा।
0: वैसे चाचा जी जिदा तुसीं गाउण दे हो तुहाडे तो सज्जणा दा पता नहीं राजी होना, मझां गावां ने जरूर राजी हो जाना।
1: और तेनू मैं दसा तेनू आंदियां मस्करनियां, तो मैनू एक गल का जवाब दे। हाँ हाँ शो तू शुरू कर लिया, मैनू तू बुलाया नहीं, तो एकदम मैं टपकना ही सी तो तेरा हाशा निकलना ही सीगा। हाँ चल कोई गल नहीं पुत्रा, कर फोन तू गल कर। मैनू लगता किसी स्रोते का फोन आया, आप गलबात। हाँ जी हाँ जी चाचा जी एक मिनट रुको जरा, मैं गलबात करदा, मैं करदा, तुम टेंशन ना लो, तुम इतने आराम ना बैठो। आ वेखो मैं छबील भरा के लिया, छबील भी उदों तक। हाँ जी महाराज जी सत श्री अकाल।
2: सत श्री अकाल चाचा जी।
0: ओले चाचा जी दी डिमांड आ गई। आ सत श्री
1: अकाल पुत, कदा
2: चाचा जी की हाल चाल जी?
1: हां मैं कहा पुत मेरा बहुत बढ़िया, अपना सुना भाई ठीक ठाक हां
2: जी।
1: और भाई ठीक है सब घर परिवार बच्चे?
2: सोनू बोलदा जी, पिंड कुका कलोनी डिस्ट्रिक्ट कपूरथला तो जी।
1: हा हा हा हा क्या बात है सोनू, सोनू क्या बात है, मेरा फेवरेट नेम है सोनू। क्या बात है क्या बात है, की लेंदे वैसे पंजाब दे लोकी जेड़े है ना कमाल करी जांदे आ। वेखो किड्डी गर्मी पैंदी, पंजाबी टेंशन ही नहीं लैंदा, कहंदा कड़ी गल जा असीं लंगर ला जांगे छबीलां दे कदे। पंजाबी ठीक
2: है,
1: अपनी विरासत नू नी भुलना। आज आ जोरावर आया इथे शो करन ते मैं आखा अज मैं करा हाँ जरा। हाँ हाँ चाचा जी कोई गल नहीं, तुसीं भी करो, केड़ी गल है यार चाचा जी। हाँ हाँ पुत बोल ला, तू बोल ला पहला का नहीं है। बुझारत पुछ लिये
2: बुझारत पुछ लो सोखी जी जे आ गई दस देंगे।

0: आ वेलो। और तू मेरिया पोला खोलनिया, वो मैं बुझाता दी गल करना यार, बुझाता नहीं। अच्छा पुत, मैं तेन बुझारत पावा फिर एक किन्ना क ट्विस्टर पावा बुझार च पा दिए। चल बई गौर ना सुनी मेरा पुत, शीशियां दा टोबा कंडियां दी वाड़, बुझणियां ता बुझ नहीं ता हो जा बार। शीशियां दा टोबा, दो टोबे ने, कंडियां दी वाड़ अगे लगी, बुझनी ता बुझ लै नहीं ता हो जा बाहर तन।
1: पानी तो
0: नहीं जी, ये दो टोबे कट्ठे ही होंदे ने। देखो बड़ा सौखा जी, बड़ा सौखा। ये कलेश भी पवा देंदे आ दो टोबे बड़े। एक टोबा जे कि बंद हो जाए तो बहुत कुछ कचापा हो जाए। हाँ हाँ मैनू पता चाचा जी, ते हो जवानी जाना हो सची दस्यो। नहीं यार, एक एक कते जे टोबा बंद हो जाए ना, ये बड़े कलेश पै जाते। यार समझा नहीं तू यार। दोबारा बोलना, शीशियां दा टोबा, इस तुसी अपनी शक्ल भी वेख सकते हो। शीशियां दा टोबा कंडियां दी वार, बुझनी आ ता बुझ नहीं ता हो जा बार।
1: शीशा दा नहीं है।
0: और चलो होर मैं तुहानू दसदा, ये साडे मुंह ते लगा हुंदा जी,
1: अखां।
0: हाँ क्या बात है, क्या बात है। देखिया बुझ लिया ना मेरे पुत ने, फिर जोरदार तालियां हो जा। चलो ए तालियां मारो। कमाल है चाचा जी, वेलो ताड़ी जनता ही ताड़ा कहना नहीं मानती। सो जोरदार ताड़ियां, तुसी जवाब बिल्कुल सही दिता। सो एक बारी बुझारत तुहानू असी दोबारा दोहरा दिंदे आ, शीशियां दा टोबा कंडियां दी वाड़, बुझणियां तां बुझ नहीं तां हो जा बार। बिल्कुल सही जवाब, इहदा जवाब है अखां। ते लओ जी कंठ कलेर दा गाणा तुहाडे सामने असी पेश कर रहे हैं चाचा जी दी रहनुमाई हेठ।
2: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक आ चाचा।
0: बहुत बहुत शुक्रिया जी, तुसी सानू कॉल कीती। इसे तरीके नाल सानू रोजाना तुसी कॉल करदे रहो ते नज़ारे लैंदे रहो ते अपने खूबसूरत जिहड़े बोल ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।
2: ਹਾਂ ਕਮਾਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਯਾਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਟੋਬਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਆ।
0: ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਹੱਸੋ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ, ਹੱਸੋ ਹਾਂ। ਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਬਸ ਇੰਨਾ ਘਸਣਾ ਹੁੰਦਾ।
2: ਦੇਖਿਆ ਪੁੱਤ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਕਹੀਏ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ।

0: हाय हाय हाय हाय, क्या बात है। मैं खा मजा ही आ गया थी, कमाल का थी। नहीं हो मैं नहीं, ओपनिंग का नहीं, ओपनिंग टू करो, जोरावर सिंह जी तुसी करो।
1: शुक्र है चाचा जी। पैर कितने ने ताने?
0: मेरे पैर मेरे थले ही पैर आते ही लगे और कच्चे लगे। मैं करे छाटी कहने मारी जहाँ कमाल दिया गला करी जाने। यार जोरावर तू थोड़ा सा कंट्रोल कराया कर यार, तू कंट्रोल नहीं करता। चाचा जी बस यार की करी जाने यार, है रुक दे नहीं तुसी। और यार पैर मेरे पैर च ही लग गया और कच्चे लग गया, है कमाल करी जाना है।
1: हाय ओए रब्बा दोस्तों, इन्हों का तो चलता ही रहना, चाचा जी का बड़े चुगली ने। सो दोस्तों, एफ एम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी जलंधर दे रही चैनल है, तो तुम अपने शो सुन रहे हो, मज़ेदार शो जिसका नाम हैलो जलंधर। तो हैलो हैलो करने वास्ते अज साडे दरमियान बहुत सारे कॉलर्स जिहड़े जुड़े हुए ने, तो चाचा जी भी जुड़े ही हुए।
0: हाँ की मतलब है
1: चाचा जी जुड़िया? माड़ी माड़ी गल थोड़ा ना।
0: नहीं जुड़िया जुड़िया कि मैं विक्रम बताल है, विक्रम बताल अंगू जिदा पिठ से चढ़ जाता ही, तो पिठ तो थले लहिंदा नहीं, बांदर के अंगूठे चढ़िया जाता सी।
1: चाचा जी ना बुलाओ, कहते रूहां नूं बुलाण नाल रूहां आ जांदियां।
0: आ जांदियां इत्थे ए काती वाह सी।
1: चाचा जी किसी ने बूहा खोलिया?
0: डराया ना करो।
1: वाह चाचा जी वाह, शाबाश। हुणे कहिंदे मैं डरदा नहीं, तो हुण तुहाडे डर ना डर दे नाल तुहाडे त्राह निकलण दे ने। हैं आ वेखो मुड़को मुड़के हो गए तुसीं एक मिंट च।
0: मनिया यार मैं थोड़ा चाचा, मेरे तजर्बा पर मैं बड़ा भरावा डरजा लगता कई बार। चलो खैर तू भरा मेरा शो शुरू कर, फोन आ रहा, फोन चुक ला। कहता है
1: हैलो।
2: हैलो नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, सत श्री अकाल, की हाल चाल? शुक्र है लगता गया, वेलो तरंगा फड़ लिया साडे फोन ने अज तुहाडियां।
2: हां जी असीं दौड़ा लगांदे आए आं, पूरे साह चा साह साह हो गई।
1: हाय ओए कमाल हो गई, तुसीं बह के पानी पी लो पहले आराम नाल।
2: पानी

इंग्लैंड की धरती से भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलों की पल पल की खबर। भारत के सारे मुकाबलों का सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलों का अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर के FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।

0: क्या बात है, क्या बात है जोधावन, तेरी शक्ल नु की आया पा मेरे यार, इदा किदा वेखा जा वा यार, कमाल हो गई यार। मैं तेरा कुछ, मैं कोई चुक लिया तेरी चीज़। चाचा जी यार इदा ना करो। वैसे ना अज तेरी शक्ल पता किदा दी बनी हुई, मैनू वेख के तेरे वर्गे ना मूँह उदो बनता हों किसी का जो 3 महीनों का बिल ना कट्ठा ही आ जाए। हसदे जी हुण तुसीं सारे, हसो यार, कमाल हो गई आ।
1: सो वैल वैल दोस्तों, समा हो गया हुण अगले शो का, ते तुसीं अपने अगले शो नूं

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जा रहे हैं। समारोह के दौरान राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के उद्घाटन समारोह पर श्री शाह ने अनुच्छेद 370 का जिक्र किया, जिससे जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला था।
1: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के स्नातक पाठ्यक्रमों के दाखिलों के लिए परिणाम घोषित कर दिए हैं। प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में दान के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी ने राज्य सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद को सौंपी। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी भी जारी है। गुजरात के राजपीपला में सत्र न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा और उनके पत्नी समेत 8 अन्य लोगों को नवंबर 2023 के एक मामले में 7 साल की कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में उन पर वन अधिकारियों पर हमला करने और जबरन वसूली का आरोप था। तमिलनाडु सरकार ने कतर में आग की घटना से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पीड़ितों के पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने बताया कि लगभग 315 जिले सामान्य से कम वर्षा से प्रभावित हो सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अभी भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौते होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर लिया है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय पश्चिम एशिया में जुड़े सभी घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रख रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सिसेक बंटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दामदिनयाम के साथ मंगोल रिफाइनरी परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। अमरीका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। FIH हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने जॉर्डन पर 2-1 से जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: વાણી આકાશવાણી.
1: और अब हमारा स्पॉटलाइट शहर की ओर. गाने तो मधुर होंगे, बातें भी कारगर, शहर से जुड़ी हुई आपके काम की. मेरा नाम है शैली भाषांजलि, सांझ के शो सैटेलाइट्स में आपका बहुत स्वागत.

5:10 आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स। हर किसी को कहीं पहुंचना है, किसी ना किसी दौड़ का हिस्सा है। थोड़ा मुस्कुराइए, अपनों से बात कीजिए, इस खूबसूरत सांझ को वेलकम कीजिए। अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव, बात तो बस इतनी सी है। मेरा नाम है शैली भाषांजलि।

यस, यू आर ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी रेनबो. आप सुन रहे हैं सैटेलाइट सिटी की बातें जो होती हैं, और सिटी की बातें होती हैं तो मौसम की बातें भी हो जाती हैं. मौसम का आना जाना और मौसम का बदलना हमारे लिए ना एक डिस्कशन पॉइंट बन जाता है, पर एंजॉयमेंट का सोर्स भी तो बन जाता है. जैसे शहर का अचानक बदला मौसम और हो गई राहत, लेकिन आपकी सिटीज़ में शायद मौसम ऑफिशियली बदल चुका है, मानसून अराइव हो चुका है, लेकिन अगली मंजिल दिल्ली है ऑफिशियली, क्योंकि मौसम विभाग कहता है कि अनुकूल परिस्थितियां बन रही है और जल्द ही राजधानी में एक जो आधिकारिक एंट्री होती है, ऑफिशियल एंट्री, वो हो जाएगी. और छाते, रेनकोट, गर्मा गर्म चाय, नेवर गोज आउट ऑफ स्टाइल. इट वॉज देन, इट इज़ नाउ, इट विल ऑलवेज बी.

स्टे ट्यून्ड टू सैटेलाइट्स फॉर अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। सांझ के शो में हम और बातें करेंगे शहर से जुड़ी। शहर से जुड़ी बातें तो करेंगे लेकिन एक संयोग की बात करते हैं। बहुत ही खूबसूरत संयोग है। 21 जून को ना योग ने हमें फिट रहने के लिए, संतुलित रहने के लिए एनकरेज किया, प्रेरणा दी। और आज 23 जून को

ओलंपिक दिवस में हमें सक्रिय रहने, खेलों से जुड़ने का संदेश देता है। अब जरूरी नहीं कि आप मेडल्स जीते, पदक जीते, जरूरी ये है कि चलिए दौड़िए, फिट रहिए। एक्चुअली ये मंत्र एक दिन का नहीं, सक्रिय रहना हर दिन, पूरे वर्ष, नाउ, टुडे एंड ऑलवेज।

Good evening and welcome back to City Lights. And I wish and I hope and I pray that you're driving absolutely carefully. City roads pe bahut hi carefully chaliyega. It's peak hour me. There are a lot of people out there on the roads. Aur mausam bhi waisa kuch acha sa hai. But driving me sare rules ko follow karte hue chaliyega. वैसे हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी जो होती है ना उसको आसान बनाने के लिए कई ऐसे लोग होते हैं, कई ऐसे चेहरे होते हैं जिनसे हम रोज़ मिलते हैं लेकिन शायद उनका थैंक यू करना भूल जाते हैं। कभी कोई शिक्षक हो जो हमें सही राह दिखाता है, कोई डॉक्टर, कोई नर्स मुश्किल समय में हमारी देखभाल करता है, पुलिस कर्मी जो हमारी सुरक्षा में तैनात रहते हैं, तो कोई अधिकारी जो जन सेवाओं को हम तक पहुँचाते हैं, हमारा काम आसान करते हैं।

इट्स वेरी सीमलेस समटाइम्स. और इन्हीं लोगों को समर्पित है आज का दिन 23 जून, जिसको संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे. एक बेहतर समाज, एक मजबूत राष्ट्र, उसके निर्माण में लोक सेवकों की जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण है. उन सभी लोगों को सलाम जो अपने कर्तव्य, अपनी सेवा भाव से लाखों जिंदगियों को बेहतर बनाने में जुटे हैं.

करते हैं, सिटी की, सिटी की हवा की, शहरवासियों की। और वैसे मेट्रो में ना टिकट लेने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप टोकन ले सकते हैं, स्मार्ट कार्ड उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल ऐप से QR टिकट वो भी ख़रीद सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप के ज़रिए टिकट बुक कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर डिजिटल है, ऑफलाइन विकल्प ये सारे कुछ हैं। लेकिन दिल्ली मेट्रो ने एक और नया ऑप्शन जोड़ दिया है, मोबाइल टिकटिंग कियोस्क्स। अब इस नए कियोस्क की शुरुआत फिलहाल तो 12 स्टेशन पर की गई है। यहाँ पर जो कम्यूटर्स हैं, यात्री हैं, मशीन पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके टिकट खरीद सकते हैं और टिकट का QR कोड सीधे उनके व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगा। अब सवाल यह है कि इतने विकल्प जब हैं तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? एक्चुअली ये पाया गया कि जो कम्यूटर्स हैं, हर यात्री ना मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं करता। कई लोग स्टेशन पहुंचने के बाद ही सोचते हैं चलो टिकट खरीद लेते हैं, वहीं टिकट काउंटर्स पे लाइन लग जाती है, समय लगता है। और ये नई सुविधा इसीलिए जो बिना ऐप को डाउनलोड किए, बिना लाइन में लगे, कुछ ही सेकेंड में डिजिटल टिकट लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। जानकारी सिटी लाइट्स में आपके लिए, मेरा नाम शैली भाषांजलि।

0: अब इस नए कियोस्क की शुरुआत फिलहाल तो 12 स्टेशन्स पे की गई है। यहाँ पर जो कम्यूटर्स हैं, यात्री हैं, मशीन पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके टिकट खरीद सकते हैं और टिकट का QR कोड सीधे उनके व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगा। अब सवाल यह है कि इतने विकल्प जब हैं तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? एक्चुअली ये पाया गया कि जो कम्यूटर्स हैं, हर यात्री ना मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं करता। कई लोग स्टेशन पहुंचने के बाद ही सोचते हैं चलो टिकट खरीद लेते हैं, वहीं टिकट काउंटर्स पे लाइन लग जाती है, समय लगता है। और ये नई सुविधा इसीलिए जो बिना ऐप को डाउनलोड किए, बिना लाइन में लगे, कुछ ही सेकेंड में डिजिटल टिकट लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। जानकारी सिटी लाइट्स में आपके लिए। मेरा नाम शैली भाषांजलि।
1: उलझ गए कैसे कोई हट गया मन से लिपट अनजाना वो नील अंग सा रूप रंग लगी समाधि प्रेम भंग अंग अंग फिर मन में दंग और तन पतंग

बजकर 36 मिनट और 15 सेकंड हमारे स्टूडियो की घड़ी में आप सुन रहे हैं शो सैटेलाइट्स। सिटी में सिटी की बातें होती हैं और सिटी के पीपल की बातें होती हैं, यानी आपकी। जुड़े रहिए हमारे साथ।

0: कहानियाँ सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू सिटी लाइट्स। और एक और जो इंस्ट्रक्शन है, चेतावनी कह लीजिए या फिर अलर्ट रहने के लिए, साइबर क्राइम ने कहा है, उसके कोऑर्डिनेशन सेंटर ने कहा है, 14C जिसको कहते हैं, उन्होंने कहा है कि बॉस स्कैम नाम की एक नई चाल ठगों ने चली है। किसी भी कंपनी के CEO हों, सीनियर ऑफिसर हों, बॉस हो, उनका व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर लेते हैं और उनके नाम से नकली अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद जो उनके कर्मचारी होते हैं उनको मैसेज भेज करके खाते में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए कहते हैं। और चूँकि मैसेज बॉस के नाम से आता है ना, तो बिना पड़ताल किए हुए पैसे भेज देते हैं। सो यू हैव टू बी रियली रियली केयरफुल। ये गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी 14C ने ये कहा है, ये जारी किया है कि डू नॉट डाउनलोड एनी अनोन फाइल्स और क्लिक ऑन सस्पिशियस यू नो लिंक्स। रेगुलरली अपने एक्टिव व्हाट्सएप वेब सेशंस को ज़रा सा मॉनिटर कीजिएगा, इंश्योर कीजिएगा कि सिक्योर है। और ऐसी ठगी का शक हो तो आप जानते हैं साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 या उनका पोर्टल भी है, वहाँ पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वैसे जहाँ भरोसा जीवित रहता है ना, खूबसूरती वहीं होती है, वहीं रिश्तों में खुशबू बसती है। जी जहाँ कहने का, सिटी लाइट्स आप सुन रहे हैं, सांझ का शो है, मेरा नाम है शैली भाषांजलि।

5:48 हमारे स्टूडियो की घड़ी में सैटेलाइट है ये शहर पे बेस्ड है ये शो, और जो शहर हमारा है ना सुबह अलग दिखता है शाम को अलग चलता है, बस नज़र चाहिए महसूस करने की, क्योंकि आप बहुत मसरूफ़ रहते हैं, ये वाली जो आदत है ना इसको थोड़ी ढील दे दीजिए।

0: मंगल भवन मंगल हारी रहहु सुदर्शन।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
2: दिल के तराने गाने नए पुराने नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

अब सिटी लाइट्स में सिटी के ट्रीज की बात करते हैं, जो ट्रीज जो हमारे पेड़ों की कटाई होती है, जो उनके शाखा जो है उनको नुकसान कभी कभी पहुंच जाता है, लोग डेलिबरेटली करते हैं या किसी कारणवश करते हैं, तो इस मामले पे थोड़ा सा एक नई सख्ती बरती जाएगी। इसके लिए एक नई SOP लागू की गई है। अगर किसी पेड़ को नुकसान पहुंचाने की शिकायत मिलती है तो अथॉरिटीज़ को मौके पर जांच करना होगा, सबूत जुटाना होगा और फिर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। यानी मामला सिर्फ शिकायत तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा। दिस इज़ अ न्यू स्टैंडर्ड प्रोसीजर विच इज़ गोइंग टू बी फॉलोड। अब शहर में विकास कार्यों के साथ साथ हरियाली बच जाए बहुत बड़ी चुनौती है आपके लिए भी, हमारे लिए भी। एक बड़ा पेड़ बहुत सालों तक छांव देता है, हवा को साफ करता है, शहर का जो तापमान है उसे कम करता है, वी नो इट। सो लेट्स टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिटी लाइट्स में आज इतना ही। मेरा नाम है शैली भाषांजलि, फिर मुलाकात होगी।

आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। तुहाडा मेज़बान यानी कि आर जे जोरावर सिंह एक बार फिर तो हाजिर है लैके तुहाडा फेवरेट शो जिहदा नाम है अज आपां तुहानूं दसांगे इस नाम दे फायदे। इस नाम दे वैसे फायदे तो आपां रोज़ ही दसदे हां, लव यू जिंदगी। सो लव यू जिंदगी अपने आप दे विच एक बड़ा ही जबरदस्त नाम है। असीं हर वार इस नाम नूं इस करके खास कहने हैं क्योंकि जो भी असी अपनी जिंदगी दे विच इस नाम का जिक्र करते हाँ तो अपने आप दे विच ही पॉजिटिविटी की बारिश शुरू हो जाती है। सो दोस्तों आओ बिना किसी देरी दे आपां इस शो का आगाज़ करते हैं।

0: वेलकम बैक एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल है ते तुसी अपना फेवरेट शो इंजॉय कर रहे हो जिहदा नाम है लव यू जिंदगी। मैं कहांगा एक बारी सारे आपां रल के ना जिवें असी हर वार करदे आ की करदे आ तुहानूं पता ही है ना, जिहड़े नवे स्रोते साडे नाल जुड़े ने उह वी एक बारी ना आपां इकट्ठे बोलांगे रेडी 1 2 3 ते लव यू जिंदगी। ठीक है जी, शर्माना नहीं आ, भावें कल्ले बैठे हो तो भावें दोस्तों च बैठे हो, आओ रल के फिर आपां कहीए सारे जने। ठीक है, 3 2 1 लव यू जिंदगी। क्या बात है यार, मज़ा ही आ जाता जो तुम ये वाला वर्ड कहने ना लव यू जिंदगी। तो वाकई तुसी अपना के देख लो, साइंटिस्ट भी कहिंदे ने कि तुसी किसी भी शब्द नू या किसी भी काम नू अगर तुसी लगातार 21 दिन तक करते हो ना तो वो चीज़ जिहड़ी आ तुहाडी जिंदगी दे उत्ते बहुत ही इंपैक्ट पाउंदी है, इफेक्ट पैंदा आ। जैसी संगत वैसी रंगत, संगत जिहदी मर्जी कर लो असर जरूर पाउंदी है। सो दोस्तो हुण वेला जिहड़ा हो गया है वह प्रदेशिक खबरां दा हो गया, तो इन्हां खबरां तो बाद आपां फिर तो तुहानूं मिलदे हां। स्टे ट्यून्ड, जुड़े रहना क्योंकि लव यू जिंदगी दे किस्से बड़े खूबसूरत होर भी पए ने ते आपां रल मिल के गल्लां बातां करांगे। मिलदे हां जी एक छोटी जी ब्रेक तो बाद, तुसीं उदों तक प्रदेशिक खबरां सुणो।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसीं चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दीआं खास खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज राष्ट्रपति भवन विखे दूजे नागरिक सम्मान समारोह च पद्म पुरस्कार प्रदान किए। डेरा सचखंड बल्लां तो अध्यात्मिक गुरु संत निरंजन दास जी और चंडीगढ़ तो इंद्रजीत सिंह सिद्धू नूं पद्म श्री नाल नवासिया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब राज बिजली कारपोरेशन लिमिटेड विच नवनियुक्त उम्मीदवारां नूं नियुक्ति पत्र तकसीम किए। पंजाब सरकार वल्लों दिव्यांगजनां दी

वेलकम बैक दोस्तों, एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी जलंधर दा रेडियो चैनल है ते तुसी सुन रहे हो लव यू जिंदगी। मैं हाँ तुहाडा अपना मेजबान आरजी जोरावर सिंह। उम्मीद है तुहाडी जिहड़ी शाम है मुस्काना ते चंगीआं सोचां नाल भर गई होवेगी। चलो एक बार फिर जिंदगी का जश्न मनाइए, क्योंकि हर नवा पल एक नवी उम्मीद लैके आउंदा है। मुस्कुराउंदे रहो, जुड़े रहो, क्योंकि हुणे होर भी बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्त। ते हुण जिहड़ी तुहानूं असीं नवी कहानी सुणावांगे ना, उह वी तुहानूं पूरे जोश दे नाल भर देगी। वैसे पॉजिटिविटी का भंडार ही है साडा शो। आओ फिर हुण जिहड़ी नवी कहानी असीं तुहानूं सुणाउने आ, इस कहानी का नाम है कुएं वाला गदा। एक सकारात्मक पंजाबी कहानी। एक पिंड विच एक किसान कोलों बुढ़ा गदा सी, यानी कि एक बजुर्ग गदा। एक दिन वह गदा अचानक एक सुके कुएं विच डिग पिया। गदा उची उची रेंकण लग पिया। किसान अते पिंड वाले इकट्ठे हो गए। काफ़ी कोशिशों तो बाद भी गदे नू बाहर कढ़न का कोई तरीका ना लभ्या। किसान ने सोचा, गदा भी बुढ़ा है तो कुआं भी सुका पिया है, क्यों ना कुएं नू मिट्टी नाल भर दिता जाए। पिंड वाले फाफड़े ले आए अते कुएं विच मिट्टी पाउण लग पए। जो पहली बार मिट्टी गधे की पिठ से डिगी तो वह बहुत घबराया, पर कुछ देर बाद उन्हें एक अजीब काम करना शुरू कर दिता। जिनी बार मिट्टी उसकी पिठ से डिगदी वह उन्हें झाड़ दिंदा अते उस मिट्टी उत्ते एक कदम उपर चढ़ जाता। मिट्टी डिगदी रही, गधा झाड़दा रहा ते एक कदम उपर चढ़ता रहा। कुछ घंटिया बाद वह खूह के मूँह तक पहुँच गया अते छाल मार के बाहर आ गया। पिंड वाले हैरान ही रह गए। सिख्या मिलती है कि जिंदगी भी कई बार साढ़े उत्ते मिट्टी सुटती है, कदे नाकामी दे रूप में, कदे लोगों दी गल्लां दे रूप में, कदे मुश्किलों दे रूप में। पर कामयाब लोग वह नहीं होंदे जिन्हां उत्ते मुश्किलां नहीं आउंदियां। कामयाब वह होंदे ने जो हर मुश्किल नूं झाड़ के उहनूं अपनी तरक्की का एक होर कदम बना लैंदे ने। याद रखो, लोग तुहाडे राह विच रुकावटां पा सकदे ने, पर उही रुकावटां तुहाडी सीढ़ी भी बन सकदियां ने। जे तुसी हार मन्नण दी बजाए अगे वधना चाहो तो क्यों नहीं वधना चाहिदा, जरूर वधना चाहिदा। जिंदगी जो तुहाडे उत्ते मिट्टी सुटे उन्हूं बोझ ना बनाओ, उन्हूं सीढ़ी बनाओ।

0: मजदूरी हुई तुम्हारी?
1: हाँ, 1,000 रुपया।
0: 1 हथौड़े का 1,000?
1: जी हाँ, हथौड़ा मारने का 1 रुपया और 999 रुपये ये जानने के कि हथौड़ा कहाँ मारा जाए।
2: आप लोगों ने मुझे दूध देने वाली गाय की तरह नहीं पाला है, बल्कि बोझा ढोने वाले बैल की तरह तैयार किया है। आखिर मैं कब तक यूं ही बोझा ढोता रहूं?
3: हम ताकतवर तभी हैं जब तक हम एक हैं। अलगाव वो दरार है जो किसी भी इमारत की बुनियाद में समाकर उस इमारत को बर्बाद कर देती है।

दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, गाना कितना ज्यादा खूबसूरत है ना। तो चलो जी हले तुसी विच्चे डायलॉग भी सुनिया, ते ये जेड़ा डायलॉग सी, ये जेड़ी दमदार आवाज सी ना, ये आवाज सी राज बब्बर जी दी। जी हाँ दोस्तों, तुसी ट्यून कीता 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते, मैं तुहाडी अपनी दोस्त महक, ते प्रोग्राम चल रहा है फिल्मी दुनिया। ते फिल्मी दुनिया दे विच असी गल कर रहे हैं राज बब्बर जी दी। करते हाँ कि उन्होंने अपनी जिहड़ी एक्टिंग उन्होंने आई वो किदां आई। तो मैं पहले ही कहा है कि जिहड़ा थिएटर आर्टिस्ट हुंदा है ना, उहदे जज्बात वक्रे ही हुंदे, उहदी सोच वक्री हुंदी है। तो फिर इन्हां दा जिहड़ा करियर है उन्होंने दिल विच शुरू हो गया सी, ते उन्होंने सोचा कि क्यों ना थिएटर किया जाए। स्कूल कॉलेज विच नाटकां च हिस्सा लैंदे सी, फिर नैशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जिहड़ा है दिल्ली दे विच है, उत्थे जाके उन्होंने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। लेकिन उस तो जान तो भी पहला ना उन्होंने पंजाब की शान जिहड़ी है पटियाला यूनिवर्सिटी के ड्रामा विभाग में पहुँच गए, उत्थे जाके एक्टिंग की, तो उत्थे जाके उन्हां दी मुलाकात हुई हरपाल निवाणा जी नाल, जिन्होंने उन्होंने अंदरले कलाकार नूं पहचानिया, तो NSG जाके एक्टिंग का कोर्स करन दी सलाह दी। फिर वो NSG गए, यानी कि उन्हां दी अदाकारी ने मुढ़ले दिनां विच एक वड्डा हिस्सा पंजाब दी मिट्टी ने भी पाया सी। उन्हां दी एक्टिंग दे विच तां ही असीं कहिंदे हां कि इन्ने ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट एक्ट वो कर लैंदे ने, गुस्से वाला भी, प्यार वाला भी, विलन वाला भी, तो हीरो वाला भी। तो चलो जी हुण उन्हां दी ही खूबसूरत जी मूवी उमराओ जान दा एक होर गीत जिहड़ा है असीं सुनते हैं। ये क्या जगह है दोस्तों, बिल्कुल केड़ी थां है जिथे हर कोई कलाकार बनिया बैठा है। तो चलो जी गीत सुनते हैं, मिलते हैं गीत दे उस पार। प्रोग्राम सुन रहे हो फिल्मी दुनिया महक दे नाल।

दमदार आवाज़ बब्बर सर दी, यानी राज बब्बर जी की दमदार आवाज़ दे विच तुसी हले हले डायलॉग सुने आ जिहदा जिहदे विच ना वह अपने छोटे भरा नूं बचा रहे हुंदे सी ते कह रहे हुंदे सी, यानी मूवी दे विच, बिल्कुल मूवी दे विच, असल दे विच नहीं, वह मूवी का डायलॉग सी। तो चलो जी वधदे आ, होर ज़्यादा गल्लां बातां हुण करदे आ राज बब्बर जी बारे। ते हुण NSD दे विच उन्होंने एडमिशन तां लै ली, उत्थे उन्होंने एक्टिंग स्टार्ट कर दी। लेकिन कहिंदे ने ना जदों भी तुसी कुछ करन जाओगे उत्थे ऑब्सटैकल्स भी आणगियां ते कुछ लोग भी मिलणगे, उन्हां नूं भी मिले कुछ लोग। उत्थे उन्हां नूं नसीरुद्दीन शाह ते ओम पुरी वर्गे महान अदाकार मिले जिहड़े उन्हां दे सीनियर सी। उन्हां नूं दिन विच नाटकां लई पता किन्ने ज़्यादा रुपए मिलदे सी, तुसी आप सोचो, सिर्फ 25 रुपए ते 5 रुपए मिलदे सी रिहर्सल लई। ते सोचो अज दे जिहड़े सुपरस्टार ने जो उस दौर तो इस दौर तक आए ने, उन्होंने किन्नी ज़्यादा मेहनत की होएगी, किन्ना कुछ वेख्या होएगा, जिन्हां विच्चों एक सी राज बब्बर जी। तो चलो जी सुनते हैं एक होर गीत, ये तेरा घर ये मेरा घर, जगजीत सिंह जी की आवाज़ दे विच, जिहड़ा कि इन्हां दी ही एक मूवी का गीत है।

ये तेरा घर ये मेरा घर, ये जिहड़ा गीत है ये उन्हां दी खूबसूरत जिही मूवी दा है जिस मूवी दा नाम है साथ साथ। कई बार इदा भी होंगे असं करन कुछ जाते हैं साढ़े नाल हो कुछ जाते असं सोचते हैं कि शायद ये जी ओपरचुनिटी है ना ये शायद साढ़े लिए है, असं मेहनत भी करते हैं सानू मिलती भी है, लेकिन एक अहम वक्त जदों आता है उस वेले की होंगे है वह मौका तुहाडे हाथ तो चला जाता है। तो इदा का ही कुछ होया राज बब्बर जी नाल। जदों राज बब्बर जी फिल्मों में हथ अजमा रहे सी तो मशहूर डायरैक्टर रमेश सीपी जी ने उन्हां दी एक्टिंग बहुत ज़्यादा वधिया लगी तो बहुत वड्डी फिल्म शक्ति लई उन्हां दा स्क्रिप्ट जिहड़ा स्क्रीन टैसट है वह किया गया। खुद दिलीप कुमार साहब जी उन्हां दे टैसट नूं देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो गए तो खुश भी होए तो कहा कि हुण तां तुसीं साडी फिल्म लई ना बिल्कुल पक्के हो। पर किस्मत दी खेड देखो बाद विच ओह जिहड़ा रोल है वह महानायक किनू मिलिया होएगा अमिताभ।

बार बार देखो, हजार बार देखो, वेखण दी चीज है, देखना तो बनता है। कई हो जा कलाकार जिन्ने एक्टिंग तो की थी, लेकिन हाँ अपनी जेड़ी है ना वो अंदाज, अपना वखरापन वो भी साढ़े नाल साझा किया। एक कई हो जा कलाकार जिस दे बारे हुण मैं तुहानू दसांगी ना, तुसी कहोगे वाह जी वाह, ये तो वो कलाकार है जिहदियां मूवी तुसी बहुत खुश होके वेखियां ने। जी हाँ, जिद नाल तुहाडा दिल भी मिल गया। तो मैं गल कर रही हूँ कि जे कलाकार दी, इहो जे अदाकार दी जिन्हां दी आवाज़ दी दमदार गूंज अते रॉयल अंदाज ने 50s ते 60s दे दहाके विच सब नू दीवाना बना दिता सी। जी हाँ, मैं गल कर रही हूँ अपने वेले दे मशहूर हीरो रहमान साहब दी। नरगिस मधुबाला, मीना कुमारी वर्गियां हीरोइना दे नाल उन्होंने काम किया। 23 जून 1921 नूं लाहौर विच जन्म होया। पर की तुसी जानते हो कि कोई आम इंसान नहीं सी, बल्कि अफगानिस्तान दे शाही खानदान रॉयल फैमिली नाल ताल्लुक रखदे सी। चलो इस रॉयल हीरो दे सफ़र की शुरुआत करते हैं उन्हां दी एक खूबसूरत जई फिल्म जिसका नाम है शारदा, उसका गाना सुनते हैं।

जाने वो कैसे लोग थे, केड़े लोग सी जिन्हां नूं प्यार दे बदले प्यार मिलिया। पर मैं कहनी हाँ रहमान साहब वो सी जिन्हां नूं प्यार नहीं पर हाँ एक बहुत ही खास यार जरूर मिलिया। प्रभात स्टूडियो दे दिनां तों शुरू होई गुरुदत्त ते रहमान साहब की दोस्ती। इन्नी पक्की दोस्ती कि गुरुदत्त जदों भी कोई वड्डी फिल्म बनाउंदे तां रहमान साहब उसका अहम हिस्सा जरूर हुंदे सी, चाहे वह प्यासा होवे, चाहे नहीं नहीं प्यासा मूवी का ना है, चाहे कागज़ दे फुल होण या फिर साहब बीबी और गुलाम। गुरुदत्त दीआं फिल्मां विच रहमान जी की अदाकारी ने उन्हां नूं अमर कर दिता सी। इन्ना ज़्यादा संघर्ष किया हूँ किसी की भी जिंदगी दे विच, खासकर एक योजा कलाकार जो बहुत ज़्यादा सुंदर भी है, बहुत हैंसम भी है ते एक्टिंग भी बहुत सोहनी करता है, कोई कुड़ी जिंदगी दे विच ना आवे इदा तो नहीं हो सकता। फिर पता है की होया, हुण सुनो एक मज़ेदार गल। मशहूर अदाकार अदाकारा जी

हा हा दैया दाय उठाय लियो गिर नक पर बंस बजावत देनु चनैया जगे मोहन मन में भाए नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा।

0: 시간 부스카도죠.
1: चाय की जरूरत पड़ेगी।
2: मुझे क्यों बुला रहे हैं बाबूजी?
1: मुन्ना
2: क्या हो गया? आजी सुनती हो?
1: छोटे बाबा के लिए
3: आवाज सुनी होना दी है ना, जिदे विचो कह रहे ने मुन्ना मुन्ना, यानी अपने बेटे नू आवाज़ बुला लगा रहे ने, ते कह रहे ने मेरे को आ जा, तुसी मूवी देखोगे ना बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। ते किरदार दे विच काफ़ी अलग अलग तरीके दे उन्होंने एक्ट कीते ने। तो चलो जी उन्होंने जिंदगी बारे हुण गलबात करते हैं। हरिंदर नाथ जी का जन्म जिहड़ा है 2 अप्रैल नू होया सी, हैदराबाद विच होया सी। उन्होंने पिता अघोर नाथ चट्टोपाध्याय सी, भारत के पहले DSC सी, यानी कि साइंस के डॉक्टर सी। पर सब तो वड्डा फैक्ट पता की है, वह भारत की कोकिला कही जाण वाली महान सुतंत्रता सेनानी सरोजनी नायडू जी दे सब तो छोटे भरा सी। सोचो जिस घर विच इन्नी वड्डी क्रांतिकारी अते शायरा होवे, उत्थे हरिंदर नाथ जी दे खून विच कला अते देश भगति दा होना तो लाजमी है। हरिंदर नाथ जी ने ना सिर्फ फिल्मों के विच ही एक्टिंग नहीं की थी, पर अंग्रेजी के बहुत वड्डे कवि नाटककार भी सी। उन्हां दियां लिखियां कवितावां इन्नी ज़्यादा दमदार हुंदियां सी कि खुद नोबल पुरस्कार जेतु गुरुदेव रविंद्र नाथ टैगोर जी ने भी उन्हां दी शायरी के बहुत वड्डे प्रशंसक बने सी। उन्होंने ब्रिटेन के बहुत वड्डे कॉलेज दे विच पढ़ाई की थी, ते कवितावां मैगजीन विच छप दिया गई। तेरे घर के सामने ये जिहड़ी मूवी है ना, तेरे घर दे के सामने, इस मूवी दे विच भी इन्होंने एक्ट किया। हुण इस मूवी का गीत तुसी सुनियो, मिलते हैं गीत दे उस पार।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज राष्ट्रपति भवन विखे दूजे नागरिक सम्मान समारोह विच पद्म पुरस्कार प्रदान किए। डेरा सचखंड बल्ला तो अधिक अध्यात्मिक गुरु संत निर्जन दास जी और चंडीगढ़ तो इंदरजीत सिंह सिंधू नू पद्मश्री नाल नवाजिया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर सियामा प्रसाद मुखर्जी नू श्रद्धांजलि भेंट कीती। गृह ते सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नाफेड दा नीलामी पोर्टल nafex.in जारी कीता। खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान वालों मौसम ते अलनीनो प्रभाव ते खेतीबाड़ी ते इस दे असर बारे एक जायजा मीटिंग कीती। पंजाब सरकार वालों दिव्यांगजना दी आर्थिक सुरक्षा लई चालू वित्तीय साल दौरान 125 करोड़ तो वध दी राशि जारी कीती गई। पंजाब सरकार वालों कल नू मोहाली

विकसित हुई हैं, वो है दरिया। दुनिया के जिहड़े वड्डे वड्डे शहर ने अक्सर दरिया के कंढियां ते ही बने ने। जेलम जिहड़ी दरिया है वह भी इस गल का मिसाल है, इस गल की मिसाल है कि किसानी, व्यापार या फिर आबादी या फिर सभ्याचार सब कुछ इस दरिया के आस पास विकसित होया। तो एक होर गल है कि 1849 दे विच, यानी कि 1849 दे विच, जिहड़ा 49 तो बाद मैं गल करा तो ब्रिटिश राज दा अक्सर जेलम दे विच ही होया सी राज। जेड़ा है जेलम दे विच भी उसने राज कीता। रेलवे लाइन्स बनी सी जिस वेले राज सी, पुल बने सी, शहर व्यापार जेड़ा है वह होया सी, ते वड्डा जेड़ा मरकज़ बनिया सी। अज भी कई पुरानी इमारतां उस दौर दी याद संभाल के बैठिया हुई ने। वो कहंदियां ने एक बार आओ तो सही, सानू देखो तो सही, देखो इतिहास की बोलता है, देखो पुराने टाइम दे विच की होया सी। हुण तां तुसीं फोनां दे विच लगे होए हो, पर देखो दोस्तो फोन चलाने दे नाल ना अखां ते भी बहुत ज़्यादा जोर पैंदा है। सो घट तो घट फोन चलाया करो, क्योंकि सेहत है तां ही तां तुसीं कुछ कर पाओगे, इस लई सेहत जरूरी है। फिलहाल जेलम दरिया, जेलम शहर बारे असी गलबात कर रहे हैं, ते गलबात करते करते असी अज पंजाबी सॉन्ग्स नू भी इंजॉय कर रहे हैं। ते अगला पंजाबी गीत जेड़ा है भाई अमरजीत जी दी आवाज़ दे विच है, इंजॉय करना क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है रंगला पंजाब।

जी हाँ दोस्तों, तुसी ट्यून कीता 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से। मैं तुहाड़ी अपनी दोस्त महक ते प्रोग्राम इंजॉय कर रहे हो रंगला पंजाब। पंजाब दे मिट्टी नूं ना बहादुरां दी मिट्टी भी कहा जांदा है, इस गल तो सारे सहमत।

एनटीए दे एनटीए ने अंडर ग्रेजुएट दाखलियां लई अज सांचे यूनिवर्सिटी दाखला इम्तिहान 2026 दे नतीजे ऐलान कीते ने। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब राज बिजली

रक्षा मोहन जी ने तो लिखा है, कोई भी गीत लगा दीजिए, यानी गीत में शामिल कर लीजिए। ठीक है जी। तो नेक्स्ट आया है, नमस्कार जी, फिल्म अनाड़ी सब कुछ सीखा हमने, जलालाबाद वेस्ट से सानू सुरेश गगनेजा जी ने फरमाइश जेड़ी है ये भेजी है। नेक्स्ट प्रोग्राम दिल चाहता है अमरगढ़ जिला श्री गंगानगर तो कुलवंत मान लखविंदर कौर जी ने सानू फरमाइश भेजी है तो कहा है किसी भी गीत में शामिल किया जाए। सत श्री अकाल जी, दिल चाहता है प्रोग्राम दे विच महक मैडम जी, नमस्कार। नमस्कार जी, ते बलविंदर सरा ते गुणतास सरा जी ने सानू फरमाइश भेजी है, लिखिया है फिल्म बाजार गीत दे बोल फिर छिड़ी रात बात फूलों की। अगली फरमाइश साढ़े को आई है फतेह सिंह नत तो ते गुरदासपुर सिटी तो, नत जी ने सानू फरमाइश भेजी है गुरदासपुर सिटी तो, लिखिया है सोंग थके रात से नज़ारे पुत जट दा जेड़ी मूवी है उसका गीत सुनना चाहते ने सविता सत्थी जी आवाज़ दे विच। अगली फरमाइश जेड़ी है वो साढ़े कोल आई है आपको प्रेम पूर्वक आदाब आदाब जी, ते कहंदे ने एनी सोंग किसी भी सोंग दे विच शामिल किया जाए, सैयद मसरूर जी ने सानू फरमाइश भेजी है। ते नेक्स्ट फरमाइश है फिल्म लोफर दा सोंग कोई भी कोई शहरी बाबू दिल लहरी बाबू गीत सुनना चाहते ने पिंड वड़िंग खेड़ा जिला श्री मुक्तसर साहिब तो भोला सिंह जी। ओके जी, तो आड़ी फरमाइश असी पूरी करते हैं, फिलहाल साड़ी एक होर दोस्त ने सानू फरमाइश जी है वो भेजी सी ते लिखिया सी बाबुल की दुआएं लेती जा गीत चला दिता जाए। ठीक है जी, तो आड़ी फरमाइश असी लगा रहे हैं।

की चादर ओढ़े बैठा है आसमान, शाम की चादर ओढ़े बैठा है आसमान, सितारों ने भी कर लिया है महफिल का ऐलान, मोहब्बत यादें और गजलों का होगा संगम। स्वागत है आपका कार्यक्रम शामे गजल में। वो प्रोग्राम जिसमें महफिल सजती है गजलों की, शायरियों की, जहां दिल को सुकून मिलता है, जहां आंखों को ठंडक मिलती है,

शाम ढली तो यादों ने फिर दस्तक दी, शाम ढली तो फिर यादों ने दस्तक दी, दिल ने कुछ पुरानी बातों की आहट की। हमने सोचा, हाँ हमने सोचा, क्यों ना सजाई जाए एक महफिल जहाँ हर गजल दिल को सुकून दे और हर शेर मोहब्बत की राहत। ट्यून किया 102.7 मेगाहर्ट्ज थे, मैं तो हड़ी अपनी दोस्त महक थे, प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो शामे गजल। अगली गजल सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ के, उसकी

रात की खामोशी में कुछ राज छुपे होते हैं, चांद की चांदनी में कुछ ख्वाब छुपे होते हैं, जो दिन की भीड़ में कह नहीं पाते हम, जो दिन की भीड़ में कह नहीं पाते हम, वो जज्बात अक्सर रातों में लिखे होते हैं।

थोड़ी देर के बाद बोले, ठीक है कल से बंद कर देते हैं। तो बीवी बहुत खुश हुई, चलो कल से शराब बंद कर देंगे। लेकिन जो दूसरे दिन सुबह हुई तो देखा कि अखबार

मौजों की रवानी है, रात भी सुहानी है, चांद की चादर ओढ़े बैठी ये जिंदगानी है। आइए कुछ पल गजलों के नाम कर दें, क्योंकि हर दिल की अपनी एक कहानी है।

जिसको देखा ही नहीं उसको खुदा कहते हैं, जिसे पाया ही नहीं उसकी दुआ करते हैं। अजीब दस्तूर है इस दिल की दुनिया का, कि अजीब दस्तूर है इस दिल की दुनिया का, जो सबसे दूर हो उसी से वफा करते हैं।

पुराने गमों की खुशबू में दिल फिर से महक उठता है। हर धड़कन जैसे किसी मीठी आवाज़ से बहक उठता है। ये गीत नहीं लम्हों का जादू है, दिल से हर दिल चहक उठता है। तो इसी ट्यून की तय 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से मैं तो हड्डी अपनी दोस्त महकते प्रोग्राम शुरू हो गया। एक प्यार का नगमा है।

जो दिल से सुन ले इन हवाओं की सरगोशी, जो दिल से सुन ले इन हवाओं की सरगोशी, उसे हर लम्हे में मोहब्बत का एहसास रहता है।

ये जो गुजर रहा है, ये जो गुजर रहा है मेरे दोस्त, ये वक्त नहीं, जिंदगी है।

और फिर चांद हासिल हो जाए तो उस पे लगा दाग नजर आने लगता है, ये दुनिया कितनी कमाल की है। जब हासिल बेदाग हो जाए तो उसमें भी खामियां नजर आने लगती हैं, कौन कहे इन्हें, कौन बताए इन्हें कि लोग ऐसे ही नहीं, लोग ऐसे ही नहीं हो जाते बेरुखे। जब किसी से प्यार करते हैं तो प्यार दिल से किया करते हैं।

एक रात एक बात लिखूंगा, खुद को दाग तुझे साफ लिखूंगा। एक रात एक बात लिखूंगा, तुझको दाग खुद को साफ लिखूंगा। हकीकत में तू कभी मिलेगा नहीं, कि हकीकत में तू कभी मिलेगा नहीं। एक किताब में अपनी मुलाकात लिखूंगा, एक किताब में अपनी मुलाकात लिखूंगा।